वह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप जानेंगे साथियों हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार

नशे का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो

इस क्षण का नाम अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा

0: जनहित में प्रसारित।
1: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
2: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
1: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहाँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नवा विषय निहाते। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आपकी बातचीत नो विषय है कि बारिश ना मौसम में अपने पशुधन नु प्रबंधन हरते करी सका। भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: માઇન્ડ બનુ ગીત તો અહીં પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે માઇન્ડ બનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે બારિશના મોસમમાં પશુધન પ્રબંધન આપણે હારતે કરી શક તો ભાઈન બોનું અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે અને મને કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલીજી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવારમાં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમમાં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે મોસમમાં હમ પશુઓ કા પ્રબંધન કેસે કરે क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो मौसम है वो संक्रमण से भरा हुआ होता है मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु जो होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो पशुपालन करते हैं तो उन्हें बारिश के मौसम में किस तरीके से अपने पशुओं के प्रबंधन की आवश्यकता है
1: जी बिल्कुल हम सभी के लिए बारिश का मौसम जितना सुखदायी और खुशहाली और हरियाली से भरा हुआ होता है ये मौसम उतना ही हमें हर तरफ से रोग भी जो है बढ़ाता है तो जरूरत है कि इस समय हम अपने पशुधन का भी विशेष प्रबंधन करें उनकी देखभाल में विशेष सावधानी बरतें ये करना जरूरी है क्योंकि ये मौसम जैसा कि संक्रमण कीचड़ और परजीवियों की वृद्धि के लिए जो है सबसे अनुकूल माना जाता है तो सबसे पहले पशुधन के लिए सूखा हवादार और पानी से बचाने वाला जो है पशु घर होना चाहिए या पशु शेड होना चाहिए अगर नहीं है तो उसे बारिश के समय बना लेना चाहिए
0: जी जी बिल्कुल
1: इससे होगा ये कि इन्हें पानी सर्दी या बीमारियों से आसानी से बचाया जा सकेगा चारे और पानी की सफाई भी जो है इस समय विशेष ध्यान देने योग्य चीज होती है
0: जी जी
1: क्योंकि इस समय फफून कीड़े मकोड़े उसमें लगे होते हैं जिसको खाने से पशुधन जो है संक्रमित हो सकता है
0: जी हाँ।
1: बारिश में जमीन गीली होती है जिसके कारण खुरपका और मुंहपका ये जो रोग हैं इनकी संभावना भी जो है बहुत बढ़ जाती है
0: जी बिल्कुल
1: इसलिए यदि हो सके तो उनके पैरों की जो है नियमित सफाई मतलब उनको धोना या उसमें किसी तरह का जो है कीटाणु रहित करने के लिए कोई घोल यदि मिलाया जा सकता है तो उस पानी में मिला के जो है उनके पैरों की सफाई कर देना चाहिए
0: जी जी बिल्कुल
1: अगर ऐसा लगता है कि चरने जाने से या खुले स्थान में रहने से पशुधन ज्यादा गीला हो गया है तो कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से जो है उनको सूखने के लिए साफ कर दिया जाए जिससे होने वाली जो है बीमारियों से उनको बचाया जा सके इस समय में क्योंकि कीट नियंत्रण भी जरूरी होता है तो पशु शेड जो है उसमें विभिन्न प्रकार से जो है कीट नियंत्रण किया जा सकता है और टीकाकरण के साथ साथ जो है इस मौसम में उनको डीवर्मिंग यानी कि कृमिनाशक देना भी जो है उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है
0: बिल्कुल सर
1: तो इस तरह से अगर उनके आहार उनके आवास चारे और पानी का प्रबंधन किया जाए तो ये उनको होने वाली तमाम बीमारियों से बचा सकता है
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें पशु प्रबंधन के महत्व पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है यही अब मैं जानना चाहूंगी कि आवास का प्रबंधन हम कैसे करें
1: बिल्कुल आवास प्रबंधन को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जो है अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं
0: बिल्कुल
1: कि पहला है जब हम आवास की बात करते हैं तो छत का विशेष रूप से ध्यान रखें वो अच्छे से ढकी हो जिससे पानी पशुघर के अंदर न टपके कोशिश करें कि जहां हमारा पशुघर या पशु शेड हम बना रहे हैं वो जगह थोड़ी सी ऊंचाई पे होना चाहिए ताकि ज्यादा पानी वाली स्थिति में वहां पे पानी जमा न हो
0: बिल्कुल
1: फर्श यदि है तो उस पे सूखी राख या भूसे की थोड़ी सी परत बिछाई जा सकती है जिससे कि उसमें जो नमी है उससे इन्हें चर्म रोग न होने की संभावना रहे
0: बिल्कुल
1: पशुधन के लिए हम जो शेड या घर बनाते हैं उसमें रोशनदान होना चाहिए जिससे वहां पे पर्याप्त रोशनी आए और रोशनदान आमने सामने की तरफ हो जिससे हवा का आना और जाना जो है बेहतर तरीके से हो सके और वहां पे ज्यादा नमी न बने इसके बाद हम चाहें तो नीम की पत्तियों का पानी फिटकरी या राख जैसे आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से हम हमारे पशु घर को जो है कीटाणु रहित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए क्योंकि इस समय फर्श गीला होता है और आसानी से सूखता नहीं है।
0: जी जी।
1: गोबर और गोमूत्र जो होता है इसको दिन में 2 से 3 बार हो सके तो सफाई कर दिया जाना चाहिए, जिससे भी संक्रमण की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। तो इस तरह से आवास का यदि प्रबंधन किया जाए तो हम काफी सारी बीमारियों से आवास प्रबंधन से ही हमारे पशुधन को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से ये हम आपके माध्यम से आवास प्रबंधन को लेकर जान पाए। यही स्वास्थ्य प्रबंधन की चीजें इस मौसम में किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आवास प्रबंधन जरूरी है इसी तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी जरूरी है। तो हम यदि बात करें तो पैर गलने की समस्या और त्वचा रोग जो है इस समय ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जिससे बचाव के लिए हम हमारे पशु घर की साफ सफाई नियमित करें और पैर यदि ज्यादा गीले हैं, ज्यादा गंदे लग रहे हैं तो हम उनकी जो है साफ सफाई पे ध्यान दें।
0: जी जी।
1: नीम जो कि हमारे यहाँ बहुत आसानी से हमको उपलब्ध होता है, इसके पत्तों को थोड़ा सा कूट के या पीस के इसके गर्म पानी में जो है इनको उबाल के त्वचा का कहीं संक्रमण लग रहा है या घाव है तो उसकी जो है सफाई इस पानी से की जा सकती है, जो कि काफी उपयोगी होता है। हल्दी और सरसों का तेल, कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे पशुधन को किसी कारण से शरीर के किसी अंग में सूजन है तो वहां पे हल्दी और हल्का सा गुनगुना सरसों का तेल मिला के जो है लगाया जा सकता है। छोटी मोटी चोट पे भी इसको लगाया जा सकता है तो वो घाव कीटाणु रहित रहेगा।
0: जी जी।
1: और उसमें ज्यादा संक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी तरह से यदि आफरा होता है तो हम अजवाइन, मेथी, लसन इस तरह का मिश्रण बना के भी जो है उसको पीस के पानी में मिला के हमारे पशुधन को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल भी मिलाया जा सकता है। यदि बड़े पशु को देना है तो 100 ग्राम तक तेल इसमें मिलाया जा सकता है और छोटे पशु को देना है तो 20 से 50 मिलीग्राम तेल मिला के दिया जा सकता है, जिससे आफरा होने पे तुरंत उनको राहत मिलती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हमें लगता है कि पशुधन का शरीर ज्यादा गंदगी से भर गया है तो उसको नहलाने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, जिससे चर्म रोगों से जो है उसको बचाव होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: अगर ज्यादा रोग के संकेत दिखाई दें तो इस स्थिति में हमें जो है किसी अनुभवी पारंपरिक वैद्य से जो है सलाह ली जा सकती है या फिर हम तुरंत जो है डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: मुख्य रूप से होने वाली जो 2 बीमारियां हैं जिसे हम खुरपका मुंहपका यानी कि FMD के नाम से जानते हैं और गलघोटू, ये इस समय पे बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इससे बचाव के लिए यदि समय पे इसके टीके लगवा लिए जाएं तो इसकी संभावना खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाने हैं और समस्या के संकेत अगर हमें ज्यादा दिख रहे हैं तो तुरंत हमें पशु चिकित्सक से परामर्श लेनी है। यही सर हम देखते हैं कि इस मौसम में चारे पानी की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, तो इन बातों का हमारे किसान भाई बहन कैसे ध्यान रखें?
1: जी, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर समय हरा चारा आसानी से उपलब्ध होता है, हर कहीं पानी भी आसानी से उपलब्ध होता है।
0: जी जी।
1: पर इस समय इसका ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे पशुधन को हम हरा चारा देते हैं तो हरे चारे को पहले काट के थोड़ा सा सुखा लें ताकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ना रहे। थोड़ा सुखाने से उसमें होने वाले कीट वगैरह भी जो है उसमें से निकल जाएंगे, जिससे उस चारे को खाने से जो है किसी प्रकार का संक्रमण या बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाएगी।
0: जी हाँ।
1: यदि हमने ज्यादा चारा लाके रखा हुआ है तो उस चारे को सड़ने से बचाएं और अगर ऐसा लगता है तो उसे जो है आप उकेड़े या खाद बनाने के कंपोस्ट के गड्ढे में डाल दें, जिससे उसका उपयोग हो जाएगा। इस समय ये भी जरूरी है कि पूरी तरीके से पशुधन को हरा चारा न खिलाया जाए, कम से कम 30% की मात्रा में उन्हें सूखा चारा भी खिलाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दस्त लगने की संभावना होती है और जो पोषण पशुधन को मिलना चाहिए वो भी जो है बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता।
0: जी बिल्कुल सर।
1: चारे की यदि बात करें तो जो चारा हम काट के ला रहे हैं उस चारे में जब फूल आना शुरू होते हैं तो वो सबसे अच्छी अवस्था होती है उस चारे को काटने की, क्योंकि उस समय वो चारा भरपूर पोषण से भरा हुआ होता है।
0: जी जी।
1: तो कोशिश करें कि जो चारा आप काट के ला रहे हैं वो फूल वाली स्थिति में हो। बारिश के दौरान जब हमारे पशुधन को हम चराई के लिए लेके जाएं तो हम ऐसे स्थानों का चयन करें जहां बहुत ज्यादा कीचड़ या दलदली स्थिति ना हो, क्योंकि इसमें फंसने से पशुधन को जो है चोट भी लग सकती है या किसी तरह की जो है अप्रिय घटना घटने की संभावना भी हो सकती है। तो इसी तरह से पशुधन को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ जो पानी है वो पानी संक्रमित हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब आप पशुधन को छोड़ रहे हैं तो घर से पानी पिला के छोड़ें, या चराई के लिए ले जा रहे हैं तो पानी पिला के ले जाएं जो घर का साफ स्वच्छ पानी हो, और वापिस आने के बाद भी पशुधन को पानी पिला दें, जिससे कि बाहर जाने के बाद वो उस असुरक्षित पानी को नहीं पिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि बारिश

0: मौसम में हम पशुधन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो अंत में यही आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: दो बातें हैं जिनका इसके अतिरिक्त भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो पहला है कि बिजली गिरने से बचाने के लिए जो है शेड को सुरक्षित बनाएं। इसके लिए एक आसान सा उपाय है, आप एक तड़ित चालक लगा सकते हैं लोहे की राड और उसमें एक वायर लगा के जो है उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी कोयला या नमक भी उसमें डाल सकते हैं, जिससे अगर बिजली गिरने की स्थिति बनती है तो वो हमारे पशुधन को नुकसान न करे। और एक बात कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चरने के लिए खुले मैदानों में तब तक न भेजें जब तक कि वो शारीरिक रूप से थोड़े बड़े और मजबूत न हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो इन चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं, हम हमारे पशुधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था, आवास और स्वास्थ्य प्रबंधन, इन तीन चीजों का प्रबंधन यदि उचित तरीके से करते हैं तो हमारे पशुधन की उत्पादन क्षमता बरकरार रहेगी और वो किसी तरह की बीमारी या संक्रमण के शिकार नहीं होंगे।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जिंदगी भाई बोनो अपने अपने व्यास में मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घणी असल तरीका तक ही बताड़ू है कि बारिश ना मौसम में पशु नु आवास, स्वास्थ्य ने चारा नी पानी नी व्यवस्था अपना ने हर ते करवी है ने कई कई बातों अपना ने ध्यान रखू है। आशा करो हूँ कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अब टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हम रिले कर गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बूंद ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बूंद सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर हो चुकी हूं मैं अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में हाजिर होते हैं तो हम कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं जो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ होता है विषय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मंगलवार शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम सच्चा बचपन में कुछ प्रेरणादायक नाटक आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी जैसा कि श्रोता साथियों कार्यक्रम में मैं हाजिर हो चुकी हूँ, तो बातें आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों पहले हम मनोरंजन करें गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी एक नए विषय को लेकर। तो साथियों, आज भी कार्यक्रम में हम जुड़ रहे हैं एक नए विषय के साथ में। आज हम जानेंगे रेडियो नाटक के माध्यम से लालच के जाल के बारे में। दोस्तों, हम देखते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें बिना मेहनत के कुछ पाने का मौका मिलता है। उस समय हमारा मन हमें लालच की ओर खींचता है

0: लेकिन साथियों वही समय होता है जब इंसान का चरित्र और उसकी सोच की असली परीक्षा होती है। आज का हमारा नाटक इसी बात पर आधारित है। साथियों ये कहानी है दो सहेलियों की जो हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
1: नैना, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। हर रोज मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ही मिलता है। कभी मन करता है कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे अचानक सब आसान हो जाए।
2: हाँ आराध्या, यह बात तो सच है कि मेहनत का रास्ता लंबा होता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को मजबूत भी बनाता है। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है और खुशी भी ज्यादा मिलती है।
1: लेकिन नैना, आजकल तो दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है। कई लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं। उन्हें देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वही लोग ज्यादा समझदार हैं।
2: अरे नहीं आराध्या, समझदारी शॉर्टकट नहीं होती। सच्ची समझदारी सही रास्ता चुनने में होती है, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता थोड़े समय की होती है, लेकिन सही रास्ते की सफलता जीवन भर साथ रहती है।
1: नैना, जरा रुको, यहाँ देखो, ये बैग सड़क के किनारे पड़ा है, शायद किसी का गिर गया होगा। चलो इसे उठाकर देखते हैं, शायद इसमें कोई पहचान हो।
2: हाँ आराध्या, देखना चाहिए। अगर किसी का सामान खो गया होगा तो वह बहुत परेशान होगा। चलो देखते हैं, शायद हमें कोई जानकारी मिल जाए।
1: अरे नैना, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में बहुत ज्यादा, मैंने तो कभी एक साथ इतने पैसे देखे ही नहीं।
2: हाँ नैना, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन यह किसी की मेहनत की कमाई है। सोचो जिसका यह बैग खो गया होगा वह अभी कितनी चिंता में होगा।
1: अरे नैना, एक बात सोचो, अगर ये पैसे हम रख लें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कितनी चीजें खरीद सकते हैं हम, कितने काम हमारे पूरे हो सकते हैं।
2: आराध्या, यह सोच तो लालच की शुरुआत होती है। जब इंसान बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, तब वह धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगता है।
1: लेकिन अगर ये पैसे रख भी लें तो किसको पता चलेगा, किसी ने हमें देखा भी नहीं है, फिर इसमें बुरा क्या है?
2: नैना, बुरा इस बात में नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं, बुरा इस बात में है कि हमारा मन क्या कह रहा है, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं अपने मन से हार जाता है।
1: हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद मैं सच में लालच में आ गई थी। कभी कभी पैसा देखकर इंसान अपनी समझ खो देता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है।
2: नैना, यही तो सबसे बड़ी जीत होती है, जब इंसान अपने मन की लालच को पहचान लेता है और उससे दूर रहने का फैसला करता है, क्योंकि चरित्र वही मजबूत होता है जो कठिन समय में भी सही निर्णय लेता है।
1: तुम सही कह रही हो नैना, अगर मैं इस बैग के मालिक की जगह होती तो मैं भी चाहती कि कोई मेरा सामान वापस कर दे। शायद यही इंसानियत की असली पहचान है।
2: बिल्कुल आराध्या, दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। यही सोच समाज को बेहतर बनाती है।
0: तो साथियों, फिर दोनों सहेलियां मिलकर बैग के मालिक को ढूंढती है और उसका सामान उसे वापस कर देती है। उस व्यक्ति की आंखों में जो खुशी और आभार था ना साथियों, उसे देखकर आराध्या का मन गर्व से भर जाता है।
1: नैना, आज मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई है। पैसा इंसान को कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन सही काम करने से जो सुकून मिलता है ना, वाकई वह कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
2: आराध्या, सही कहा तुमने। लालच इंसान को कुछ पल के लिए खुश करता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को जीवन भर सम्मान और आत्मविश्वास देती है।
0: तो प्रिय श्रोता साथियों, ये थी नैना और आराध्या। जैसा कि हमने देखा कि दोनों सहेलियों ने मिलकर उस सामान को उसके मालिक तक पहुँचाया, जिससे आराध्या को ये समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। हमने जैसा कि बीच में सुना था कि आराध्या के मन में लालच तो आया था, क्योंकि इतने सारे पैसे उसने पहली बार देखे थे। तो श्रोता साथियों, आज की कहानियाँ में ये सिखाती है कि लालच इंसान को कमजोर बना देती है, संतोष और ईमानदारी इंसान को मजबूत बनाती है, और सही रास्ता हमेशा हमें सम्मान के रास्ते पर ले जाता है। तो आपसे भी यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, हमेशा याद रखिए कि जो इंसान अपने मन के लालच पर विजय पा लेता है वही अपने चरित्र की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी रही और ढेर सारी महत्वपूर्ण बातों को हम जान पाए जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आगे भी मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।

तो श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। जैसा कि हमने गीत से पहले दो सहेलियों की कहानी को सुना था और जाना था श्रोता साथियों कि किस तरीके से लालच करना बुरी बात होती है। साथियों, आपने जो कहानी सुनी वह सिर्फ दो सहेलियों की कहानी नहीं थी, यह हम सबकी जीवन की कहानी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें बिना मेहनत के कुछ पाने का अवसर दिख जाता है और उस समय हमारा मन हमें ये समझाता है कि कोई देख नहीं रहा है, सब लोग ऐसा करते हैं या फिर ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन श्रोता साथियों, सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके फैसलों से होती है। जब हमारे सामने लालच और सच्चाई दोनों खड़े होते हैं, तब जो रास्ता हम चुनते हैं ना साथियों, वही हमारे चरित्र की असली तस्वीर बनता है। तो श्रोता साथियों, अगर जीवन में कभी ऐसा अवसर आए जब लालच आपको आकर्षित करे, तो एक पल रुक कर अपने मन से एक सवाल आप जरूर पूछिएगा, यही कि क्या यह रास्ता सही है, क्या इससे मुझे सच्चा सम्मान मिलेगा। साथियों, अगर मन से आवाज आई नहीं की, तो समझ लीजिएगा कि आपको सही रास्ता चुनना है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र

0: परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है। क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपना वंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है गांव की कहानियां स्वराज की सीख को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहा जाता है कि किसी गांव की पहचान केवल उसकी मिट्टी, खेत और घरों से नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन को दिशा देती है। गांव की हर चौपाल, हर कुआं, हर पेड़ और हर बुजुर्ग के अनुभव में ऐसी सीख छिपी होती है जो समाज को जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने और स्वराज की राह दिखाने का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे गांव की उन्हीं कहानियों के माध्यम से कि स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संस्कार है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर बातें हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं गांव की कहानियां स्वराज की सीख को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें रहने वाली है कि गांव की कहानियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। लोक कथाओं में जानेंगे, बुजुर्गों के अनुभवों के बारे में जानेंगे, एकता की कहानियों के बारे में जानेंगे, साथ ही जल जंगल और जमीन की रक्षा हम किस तरह से करें ये भी जानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लोक परंपराएं और त्योहारों के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा और सामूहिक निर्णयों के बारे में, और आज किस चीज की जरूरत है, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है कि किसी भी समाज को समझना हो तो उसकी इमारतों को नहीं बल्कि उसकी कहानियों को सुनिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कहानियां श्रोता साथियों केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे समाज के अनुभव, संघर्ष, संस्कार और मूल्यों का आईना होती है। हमारे गांव में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जागृति जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है।
0: बिल्कुल।
1: इनमें कहीं मेहनत का महत्व है तो कहीं ईमानदारी की मिसाल है, कहीं आपसी सहयोग का संदेश तो कहीं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की सीख है। यही कहानियां श्रोता साथियों हमें स्वराज का वास्तविक अर्थ समझाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, स्वराज का अर्थ केवल शासन चलाना नहीं होता, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बताते हैं। स्वराज का अर्थ है स्वयं प्रशासन करना, अपने कर्तव्य को समझना, समाज के प्रति जिम्मेदार होना और मिलजुल कर विकास की राह बनाना।
1: बिल्कुल।
0: जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्व को भी निभाता है अंजलि, तभी सच्चे स्वराज की नींव मजबूत होती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हमारे गांव में पहले शाम ढलते ही चौपाल सजती थी, बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक साथ बैठ जाते थे, दादा दादी, नाना नानी जीवन के अनुभव से भरी कहानियां हमें सुनाते थे। उन कहानियों में कोई राजा होता था, कोई किसान, कोई चरवाहा, कोई साधु और कोई मेहनतकश महिला। साथियों, इन पात्रों के माध्यम से सत्य, परिश्रम, सहयोग, धैर्य और ईमानदारी की सीख दी जाती थी।
1: जी हाँ।
0: और यही कहानियां बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती थी अंजलि। आज हम देखते हैं कि तकनीक ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन कहानी सुनने और सुनाने की वो परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी ज्ञान तो प्राप्त कर रही है, पर जीवन के कई महत्वपूर्ण संस्कारों से दूर होती जा रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अकेला व्यक्ति सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन श्रोता साथियों जब पूरा गांव मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: पहले हम देखते थे कि गांव में तालाब बनवाने हो, रास्ते सुधारने हो, मंदिर या स्कूल बनाना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करनी हो तो लोग बिना किसी स्वार्थ के श्रमदान करते थे। यह भावना स्वराज की सबसे बड़ी पहचान है। जब समाज स्वयं अपने विकास की जिम्मेदारी उठाता है तब बाहरी सहायता केवल सहयोग बनती है, आधार नहीं। श्रोता साथियों, एक प्रेरक कहानी अक्सर सुनने को मिलती है कि एक गांव में वर्षों से पानी की समस्या थी।
0: बिल्कुल।
1: हर गर्मी में जागृति जी लोग दूर दूर से पानी लाते थे, कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ। तब गांव के लोगों ने तय किया कि वे स्वयं श्रमदान करेंगे। सभी ने मिलकर पुराने तालाब की सफाई की, वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाई और कुछ ही वर्षों में गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।
0: बिल्कुल।
1: यह कहानी हमें बताती है श्रोता साथियों कि स्वराज केवल मांगने से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से आता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे गांव की कहानियां प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाती है। पुराने समय में पेड़ों को परिवार का सदस्य माना जाता था, तालाबों की पूजा की जाती थी, जल स्रोतों को साफ भी रखा जाता था और जंगलों की रक्षा पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इन परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं थी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का गहरा संदेश भी था। आज जब जल संकट और पर्यावरण प्रदूषण ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तब इन कहानियों की सीख पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे हैं अंजलि कि गांव की कहानियां स्वराज की सीख किस तरह से है, तो ये बातें इसी तरह बनी रहेंगी हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही हैं गांव की कहानियां और स्वराज की सीख को लेकर, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना। हमने गीत से पहले जाना कि हमारे गांव की कहानियां प्रकृति से प्रेम करना हमें कैसे सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है जागृति जी कि गांव की महिलाओं की कहानियां भी प्रेरणा का स्रोत है। हम देखते हैं कि उन्होंने सीमित संसाधनों में परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, खेतीबाड़ी में सहयोग किया और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी।
1: बिल्कुल,
0: आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे बचत कर रही हैं, छोटे उद्योग चला रही हैं और अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह भी स्वराज का ही एक रूप है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज को आगे बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि युवा किसी भी गांव की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें तो गांव की तस्वीर बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कई गांवों में युवाओं ने पुस्तकालय शुरू किए, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, नशा मुक्ति अभियान चलाए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्वच्छता अभियान में नेतृत्व किया। जागृति जी, इन छोटे छोटे प्रयासों ने पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया। यह हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े पद या बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि

0: अच्छे विचार और दृढ़ संकल्प से होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्राम सभा भी स्वराज की एक महत्वपूर्ण पहचान है। गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं और उनकी जिम्मेदारियां साझा करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत भी होता है। श्रोताओं, अगर ग्राम सभा केवल औपचारिकता बनकर रह जाए तो स्वराज अधूरा रह जाता है, लेकिन यदि हर नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेगा, अंजलि, सुझाव देगा और निर्णयों को क्रियान्वयन में सहयोग करे तो गांव तेजी से आगे बढ़ सकता है। गांव की कहानियां हमें ये भी बताती है कि समाज का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने घर के सामने सफाई रखे, पानी की बचत करे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे, बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंद की मदद करें तो पूरा गांव अपने आप बदलने लगता है और यही सच्चा स्वराज है, जहां परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है।
2: जी हाँ जागृति जी, आज हमें कई कहानियों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
2: स्कूलों में, परिवारों में, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से और सामाजिक कार्यक्रमों में गांव की प्रेरक कहानियों को स्थान मिलना चाहिए। जब बच्चे अपने गांव के नायकों, किसानों, महिलाओं और शिक्षकों और समाज सेवकों की कहानियां सुनेंगे तो उन्हें भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी।
1: बिल्कुल,
2: सामुदायिक रेडियो इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेडियो गांव की उन आवाजों को सामने लाता है श्रोता साथियों, जो अक्सर बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाती। जब किसी किसान की सफलता की कहानी, किसी महिला समूह की उपलब्धि या किसी युवा के नवाचार की चर्चा रेडियो पर होती है तो वह केवल एक कहानी नहीं रहती बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है।
1: बिल्कुल,
2: इस प्रकार रेडियो कहानियों को स्वराज की सीख में बदलने का माध्यम बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि हम अपने गांव की अच्छी कहानियों को खोजें, उन्हें सुने, दूसरों तक पहुंचाएं और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है तभी उसका वास्तविक अर्थ सामने आता है।
2: जी हाँ,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव की मिट्टी में केवल फसलें नहीं उगती बल्कि विश्वास होता है, सहयोग, संस्कार और स्वराज के बीज भी अंकुरित होते हैं। हर गांव की कहानी हमें सिखाती है कि विकास बाहर से थोपा नहीं जाता बल्कि भीतर से जन्म लेता है। और जब अंजलि लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर समाज बनाने का संकल्प लेते हैं, तभी सच्चे स्वराज का निर्माण होता है।
2: बिल्कुल,
1: तो श्रोताओं आप भी अपने गांव की हर प्रेरक कहानी को अपनी ताकत बनाएं और ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति ये कह सके कि गांव हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और इसका भविष्य भी हम सब मिलकर संवारेंगे। यही है गांव की कहानियों से मिलने वाली सबसे बड़ी स्वराज की सीख।
2: बिल्कुल जागृति जी, गांव की कहानी केवल बीते समय की यादें नहीं होती हैं, बल्कि वे समाज के अनुभव, संघर्ष, सहयोग और आत्मनिर्भरता की जीवंत धरोहर है। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है जो हमें ये बताती है श्रोता साथियों कि सीमित संसाधनों के बावजूद लोग आपसी विश्वास, श्रम और एकजुटता से बड़े संकट का समाधान निकाल सकते हैं। यही कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को यह भी समझाती है जागृति जी कि विकास केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बल्कि जागरूक नागरिक की भागीदारी, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों से संभव होता है।
1: बिल्कुल,
2: स्वराज का अर्थ जैसा कि कार्यक्रम में हमने पहले भी बताया कि केवल शासन चलाना नहीं बल्कि अपने गांव, अपने संसाधनों और अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं उठाना है। जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण, महिलाओं के सम्मान, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाता है तब सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
2: छोटी छोटी सकारात्मक पहल समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो बस हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब हम अपने गांव की कहानियों को केवल किस्से नहीं बल्कि जीवन की सीख मानकर अपनाते हैं तभी स्वराज हमारे व्यवहार में दिखता है।
2: जी जी,
1: गांव की हर प्रेरक कहानी हमें ये संदेश देती है कि बदलाव किसी बड़े शहर से नहीं होता बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है।
2: जी हाँ,
1: अपनी लोक परंपराओं, अपने बुजुर्गों के अनुभव और अपने गांव की प्रेरणादायक कहानियों को संजोए क्योंकि इन्हीं में छिपी है सच्चे स्वराज की सबसे बड़ी सीख।
2: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें जानी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। अब समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना,

0: शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है पाचन तंत्र मजबूत करने और पाचन क्रिया सुधारने के उपाय को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम जो भी भोजन करते हैं उससे मिलने वाली शक्ति और पोषण इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा पाचन तंत्र कितना स्वस्थ है। यदि मनीषा पाचन सही हो तो शरीर को ऊर्जा मिलती है।
0: जी हाँ।
1: मन प्रसन्न रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन यदि पाचन कमजोर हो जाए तो गैस, अपच, पेट फूलना, जलन, भूख न लगना, थकान और कई सारी अन्य समस्याएं हमारे सामने आने लगती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के स्वास्थ्य की आधारशिला है। आज हम जानेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है, किन कारणों से यह कमजोर पड़ता है और कौन कौन से सरल घरेलू उपाय और जीवन शैली संबंधित उपाय अपनाकर हम अपनी पाचन क्रिया को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र मजबूत करने व पाचन सुधारने के उपायों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, अनियमित खान पान, जंक फूड का बढ़ता सेवन, तनाव, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए श्रोता साथियों, केवल बीमारी होने पर उपचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों को भी अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदलकर शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है।
0: जी हाँ,
1: इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मुख, अन्नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पिताशय, ये सभी सारी चीजें शामिल होती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भोजन का सही ढंग से पाचन और पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषित होना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज ज्यादातर लोग हैं वो गलत जीवन शैली के कारण भी पाचन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं श्रोता साथियों, जैसे कि समय पर भोजन न करना, अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन करना, फास्ट फूड या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, कम पानी पीना, भोजन अच्छी तरह चबाकर नहीं खाना, अधिक तनाव होना, साथ ही देर रात तक जागना, शारीरिक श्रम और व्यायाम की कमी, धूम्रपान एवं शराब का सेवन। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के हम दवाइयों का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण भी हमारी पाचन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, बहुत सी बार जल्दी जल्दी खाना खाना भी इसकी एक समस्या का कारण हो सकता है। श्रोता साथियों, इन कारणों से पेट की प्राकृतिक कार्य प्रणाली प्रभावित होती है और पाचन संबंधित परेशानी बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ,
1: यही अब बात आती है कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो श्रोता साथियों, भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाएं। अक्सर मनीषा आपने भी सुना होगा कि अपने घर परिवार में बहुत सी बार जब कोई बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाता है तो घर के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसे कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाओ, उसका पूरा रस बनाकर हमें खाने की जरूरत है। श्रोता साथियों, पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम भोजन को तोड़ने लगते हैं। जल्दी जल्दी खाने से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसलिए प्रत्येक निवाले को आराम से चबा कर खाना चाहिए। कहना चाहेंगे कि शरीर एक निश्चित दिनचर्या को पसंद करता है, जैसे कि रोज लगभग एक ही समय पर नाश्ता करना, दोपहर का भोजन और रात का भोजन करने से पाचन बेहतर रहता है। लंबे समय तक भूखे रहना श्रोता साथियों, फिर एक साथ बहुत ज्यादा खा लेना अपच का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से पाचन तंत्र मजबूत करने व पाचन क्रियाओं को सुधारने के उपाय क्या हैं उनको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से, वहीं हम गीत से पहले जान पा रहे थे कि पाचन तंत्र मजबूत करने के क्या प्रमुख उपाय हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि हमने जाना कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना है, नियमित समय पर भोजन करना है, इसी के साथ संतुलित और स्थानीय भोजन अपनाएं। यानी कि मनीषा, हमारे गांव कस्बों में मिलने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ पाचन के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे कि मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये सभी दालें और अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दही, छाछ और मट्ठा। श्रोता साथियों, इनमें रेशा यानी कि फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। इसी के साथ पर्याप्त पानी पिए, यानी कि कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि पानी पाचन का सबसे सरल और प्रभावी साथी है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भोजन नरम रहता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना कई लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव का सीधा प्रभाव है वो हमारे पेट और आंतों पर पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं। श्रोता साथियों, ध्यान, योग, संगीत और सकारात्मक सोच से हमारा तनाव है उसको कम करने में मदद मिलती है। साथ ही हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि उन्हें पर्याप्त नींद लेनी है। रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और पाचन को संतुलित रखने के लिए आवश्यक होती है।
0: जी जी,
1: देर रात तक जागने से श्रोता साथियों हमारी पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि छाछ में लाभकारी जीवाणु होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। भोजन के बाद हल्की सी छाछ और थोड़ा सा भुना जीरा और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर लेना पाचन के लिए उपयोगी होता है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ रेशेदार भोजन बनाएं, यानी कि फाइबर आंतों की गति को बेहतर बनाता है। इसके अच्छे स्रोत जैसे कि सलाद, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित दालें, चना, मूंग, मटर, ये सारी चीजें कब्ज से बचाने में हमें मदद कर सकती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, हल्का व्यायाम, योग करना पाचन क्रिया को सक्रिय रखता है। श्रोता साथियों, भोजन के तुरंत बाद लेटने के बजाय कुछ देर धीमी चाल से टहलना लाभकारी होता है। योग और प्राणायाम को हमें हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है और इसी के साथ कई ऐसे पारंपरिक उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे कि अजवाइन और काला नमक की बात करें तो श्रोता साथियों, भोजन के बाद थोड़ी सी मात्रा में इसे लेने से गैस और भारीपन से राहत मिलती है।
1: जी हाँ।
0: सौंफ भोजन के बाद चबाने से पाचन में सहायता मिलती है और मुंह की ताजगी बनी रहती है। जीरा की बात करें तो भुना जीरा जो होता है वो छाछ या सलाद में हम उपयोग में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अदरक थोड़ी सी मात्रा में लेने से हमारा जो पाचन है वो सही रहता है। कुछ लोग जो है कब्ज में त्रिफला का उपयोग करते हैं, लेकिन नियमित सेवन से पहले हमें विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रखें श्रोता साथियों कि घरेलू उपाय जो है वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के लिए इलाज नहीं होते, इसके लिए हमें डॉक्टर से ही संपर्क करने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि हमारा पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो तो हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, साथ ही त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है, पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिलता है, कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है।

0: और साथ ही हम देखते हैं कि इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए हमारे श्रोता साथियों को बार बार तला भुना खाने से बचना है, अधिक मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है और भोजन के तुरंत बाद भारी व्यायाम भी नहीं करना है। श्रोता साथियों, कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे पाचन को सही रख सकते हैं। और बहुत सी बार सवाल ये आता है कि हमें डॉक्टर से संपर्क कब करने की जरूरत है। तो श्रोता साथियों, अगर हमारे पेट में लगातार दर्द रहता है, बार बार उल्टी और दस्त आती है, मल में खून आता है, अचानक वजन जो है वो कम हो जाता है, लगातार कब्ज और गंभीर गैस, भोजन निगलने में कठिनाई और लगातार जलन या अपच रहती है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर डॉक्टर के बताए अनुसार चीजों का प्रयोग करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कई पारंपरिक आदतें पाचन के लिए बहुत लाभकारी हैं, जैसे कि मौसमी भोजन, मोटे अनाज, खेत खलियान का श्रम, जल्दी उठना, समय पर भोजन और परिवार के साथ बैठकर खाना। आधुनिक जीवन की अच्छी सुविधाओं के साथ यदि हम इन परंपराओं को अपनाकर रखेंगे मनीषा, तो पाचन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रह सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे और अंत में कहना चाहेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसी महंगे उपाय की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। नियमित समय पर भोजन करना, अच्छी तरह चबाकर खाना, पर्याप्त नींद, रेशेदार आहार, छाछ दही, रोजाना चलना फिरना, योग, तनाव से दूरी, पूरी नींद लेना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। स्वस्थ पाचन केवल पेट की समस्या से बचाने का उपाय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और खुशहाल जीवन की नींव है। इसलिए हम सभी को अपने घर परिवार में सही भोजन, सही समय और सही जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है ताकि हमारा पाचन मजबूत रहे और हमारा समाज स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न बना रहे।
1: इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ श्रोता साथियों, हम आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
3: होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अनियमित खान पान, जंक फूड का बढ़ता सेवन, तनाव, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए श्रोता साथियों, केवल बीमारी होने पर उपचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों को भी अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदलकर शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है।
0: जी हाँ।
1: इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मुख, अन्नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पिताशय, ये सभी सारी चीजें शामिल होती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भोजन का सही ढंग से पाचन और पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषित होना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज ज्यादातर लोग हैं वो गलत जीवन शैली के कारण भी पाचन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं श्रोता साथियों, जैसे कि समय पर भोजन न करना, अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन करना, फास्ट फूड या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, कम पानी पीना, भोजन अच्छी तरह चबाकर नहीं खाना, अधिक तनाव होना, साथ ही देर रात तक जागना, शारीरिक श्रम और व्यायाम की कमी, धूम्रपान एवं शराब का सेवन। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के हम दवाइयों का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण भी हमारी पाचन से जुड़ी जो समस्या है वो बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, बहुत सी बार जल्दी जल्दी खाना खाना भी इसकी एक समस्या का कारण हो सकता है। श्रोता साथियों, इन कारणों से पेट की प्राकृतिक कार्य प्रणाली प्रभावित होती है और पाचन संबंधित परेशानी बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ।
1: यही अब बात आती है कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो श्रोता साथियों, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। अक्सर मनीषा आपने भी सुना होगा कि अपने घर परिवार में बहुत सी बार जब कोई बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाता है तो घर के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसे कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाओ, उसका पूरा रस बनाकर हमें खाने की जरूरत है। श्रोता साथियों, पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम भोजन को तोड़ने लगते हैं। जल्दी जल्दी खाने से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसलिए प्रत्येक निवाले को आराम से चबा कर खाना चाहिए। कहना चाहेंगे कि शरीर एक निश्चित दिनचर्या को पसंद करता है, जैसे कि रोज लगभग एक ही समय पर नाश्ता करना, दोपहर का भोजन और रात का भोजन करने से पाचन बेहतर रहता है। लंबे समय तक भूखे रहना श्रोता साथियों, फिर एक साथ बहुत ज्यादा खा लेना अपच का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से पाचन तंत्र मजबूत करने व पाचन क्रियाओं को सुधारने के उपाय क्या हैं उनको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों, के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से, वहीं हम गीत से पहले जान पा रहे थे कि पाचन तंत्र मजबूत करने के क्या प्रमुख उपाय हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि हमने जाना कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना है, नियमित समय पर भोजन करना है, इसी के साथ संतुलित और स्थानीय भोजन अपनाएं। यानी कि मनीषा, हमारे गांव कस्बों में मिलने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ पाचन के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे कि मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये सभी दालें और अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दही, छाछ और मट्ठा। श्रोता साथियों, इनमें रेशा यानी कि फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। इसी के साथ पर्याप्त पानी पिए, यानी कि कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि पानी पाचन का सबसे सरल और प्रभावी साथी है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भोजन नरम रहता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना कई लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव का सीधा प्रभाव है वो हमारे पेट और आंतों पर पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं। श्रोता साथियों, ध्यान, योग, संगीत और सकारात्मक सोच से हमारा तनाव है उसको कम करने में मदद मिलती है। साथ ही हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि उन्हें पर्याप्त नींद लेनी है। रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और पाचन को संतुलित रखने के लिए आवश्यक होती है।
0: जी जी,
1: देर रात तक जागने से श्रोता साथियों हमारी पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि छाछ में लाभकारी जीवाणु होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। भोजन के बाद हल्की सी छाछ और थोड़ा सा भुना जीरा और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर लेना पाचन के लिए उपयोगी होता है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ रेशेदार भोजन बनाएं, यानी कि फाइबर आंतों की गति को बेहतर बनाता है। इसके अच्छे स्रोत जैसे कि सलाद, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित दालें, चना, मूंग, मटर, ये सारी चीजें कब्ज से बचाने में हमें मदद कर सकती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, हल्का व्यायाम, योग करना पाचन क्रिया को सक्रिय रखता है। श्रोता साथियों, भोजन के तुरंत बाद लेटने के बजाय कुछ देर धीमी चाल से टहलना लाभकारी होता है। योग और प्राणायाम को हमें हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है और इसी के साथ कई ऐसे पारंपरिक उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे कि अजवाइन और काला नमक की बात करें तो श्रोता साथियों, भोजन के बाद थोड़ी सी मात्रा में इसे लेने से गैस और भारीपन से राहत मिलती है।
1: जी हाँ।
0: सौंफ भोजन के बाद चबाने से पाचन में सहायता मिलती है और मुंह की ताजगी बनी रहती है। जीरा की बात करें तो भुना जीरा जो होता है वो छाछ या सलाद में हम उपयोग में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अदरक थोड़ी सी मात्रा में लेने से हमारा जो पाचन है वो सही रहता है। कुछ लोग जो है कब्ज में त्रिफला का उपयोग करते हैं, लेकिन नियमित सेवन से पहले हमें विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रखें श्रोता साथियों कि घरेलू उपाय जो है वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के लिए इलाज नहीं होते, इसके लिए हमें डॉक्टर से ही संपर्क करने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि हमारा पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो तो हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, साथ ही त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है, पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिलता है, कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है और साथ ही हम देखते हैं कि इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को बार बार तला भुना खाने से बचना है, अधिक मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है और भोजन के तुरंत बाद भारी व्यायाम भी नहीं करना है। श्रोता साथियों, कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे पाचन को सही रख सकते हैं। और बहुत सी बार सवाल ये आता है कि हमें डॉक्टर से संपर्क कब करने की जरूरत है, तो श्रोता साथियों, अगर हमारे पेट में लगातार दर्द रहता है, बार बार उल्टी और दस्त आती है, मल में खून आता है, अचानक वजन जो है वो कम हो जाता है, लगातार कब्ज और गंभीर गैस, भोजन निगलने में कठिनाई और लगातार जलन या अपच रहती है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर डॉक्टर के बताए अनुसार चीजों का प्रयोग करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कई पारंपरिक आदतें पाचन के लिए बहुत लाभकारी हैं, जैसे कि मौसमी भोजन, मोटे अनाज, खेत खलियान का श्रम, जल्दी उठना, समय पर भोजन और परिवार के साथ बैठकर खाना। आधुनिक जीवन की अच्छी सुविधाओं के साथ यदि हम इन परंपराओं को अपनाकर रखेंगे मनीषा, तो पाचन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रह सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे और अंत में कहना चाहेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसी महंगे उपाय की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। नियमित समय पर भोजन करना, अच्छी तरह चबाकर खाना, पर्याप्त नींद, रेशेदार आहार, छाछ दही, रोजाना चलना फिरना, योग, तनाव से दूरी, पूरी नींद लेना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। स्वस्थ पाचन केवल पेट की समस्या से बचाने का उपाय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और खुशहाल जीवन की नींव है। इसलिए हम सभी को अपने घर परिवार में सही भोजन, सही समय और सही जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है ताकि हमारा पाचन मजबूत रहे और हमारा समाज स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न बना रहे।
1: इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ श्रोता साथियों, हम आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम को एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम में ऐसे विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें। बारिश की पहली फुहार मन को सुकून देती है, खेतों में हरियाली लौट आती है, किसान नई उम्मीद के साथ खेती में जुट जाते हैं, बच्चे बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं और वातावरण ठंडा व सुहाना हो जाता है। लेकिन श्रोता साथियों, यही मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी लेकर भी आता है। डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, दस्त, उल्टी, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधित संक्रमण जैसी समस्याएं इसी मौसम में अधिक देखने को मिलती है।
0: जी हाँ।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बरसात का मौसम हर किसी को पसंद होता है। काले बादल, ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और हरियाली मन को आनंद से भर देती है। यह मौसम गर्मी से राहत देता है श्रोता साथियों और प्रकृति को नया जीवन प्रदान करता है।
1: बिल्कुल,
0: खेतों में हरियाली लहलहाने लगती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण में ताजगी महसूस होने लगती है।
1: जी।
0: लेकिन श्रोता साथियों, जितना मौसम सुंदर और सुखद होता है उतना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी बरतने की भी हमें जरूरत है। बरसात के दिनों में वातावरण में नमी ही अंजलि जी वो बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वो तेजी से पनपने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस कारण श्रोता साथियों सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का खतरा है वो बढ़ने लगता है।
1: जी हाँ मनीषा, बरसात का पानी वातावरण को साफ करता है, लेकिन कई बार गंदगी और दूषित पानी भी अपने साथ बहा कर लाता है।
0: जी हाँ,
1: नालियां भर जाती है, जगह जगह पानी जमा हो जाता है और मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। यदि श्रोता साथियों हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो अधिकांश बीमारियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य केवल बीमार न होना नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी है। इसलिए इस मौसम में अपनी दिनचर्या, खान पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बारिश के मौसम में सबसे अधिक खतरा दूषित पानी से होता है। कई बार पीने के पानी में गंदगी मिल जाती है जिससे दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिए। यदि फिल्टर उपलब्ध नहीं है तो पानी को कम से कम 10 मिनट तक उबाल कर फिर पिए। पानी के बर्तन को हमेशा ढककर रखें और पीने के लिए साफ गिलास का ही हमेशा प्रयोग करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है।
1: बिल्कुल,
0: यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने परिवार, समाज, कार्यस्थल की जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभा पाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, बारिश के मौसम का आनंद लेने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बरसात में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में बासी भोजन, खुले में बिकने वाला खाद्य पदार्थ और कटे हुए फल खाने से बचना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: घर का ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन सबसे अच्छा होता है। दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही और पर्याप्त मात्रा में पानी शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की बजाय घर के बने पौष्टिक नाश्ता हमें देना चाहिए। बीमारियों से बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
0: जी हाँ,
1: खाने से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोएं, नाखून

0: छोटे रखें और रोज स्नान करें, घर और आसपास कूड़ा जमा न होने दें, शौचालय की नियमित सफाई करें। यदि पूरे गांव में सफाई रहेगी तो बीमारी फैलने की संभावनाएं भी कम होंगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जगह जगह पर पानी भर जाता है, यहाँ रुक जाता है, या इसके कारण हम देखते हैं कि मच्छर वो पनपने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इससे डेंगू मलेरिया जैसे रोग हैं वो मच्छरों के कारण फैलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी ओर श्रोता साथियों, गंदा पानी पीने से और दूषित भोजन करने से हमारी पेट से जुड़ी समस्याएं वो भी बढ़ने लगती हैं।
0: बिल्कुल।
1: बारिश के कारण कपड़े और शरीर देर तक गीले रहते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने की आकांक्षा है वो बढ़ जाती है। अधिक नमी के कारण अंजलि जी त्वचा में खुजली दाग और फंगस जैसे संक्रमण वो भी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, इस मौसम में छोटी छोटी सावधानियां हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हमारे आसपास की चीजों का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल मनीषा, बारिश के मौसम में मच्छर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। डेंगू और मलेरिया जिससे बीमारियां मच्छरों को काटने से ही फैलती है। इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पुराने टायर टूटे बर्तन गमले और कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें, रात में मच्छरदानी का उपयोग करें और बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाएं। यदि श्रोता साथियों आप खेत में काम कर रहे हैं या रास्ते में बारिश में भीग जाए तो घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहन लें। गीले कपड़ों में अधिक देर तक रहने से सर्दी जुकाम बुखार और त्वचा संबंधित संक्रमण हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: बालों को भी अच्छी तरह सुखाना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चे बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर हमें विशेष ध्यान देना है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। बारिश को बच्चों को बारिश के गंदे पानी में खेलने से बचाएं, बुजुर्गों को ठंडी हवा और नमी से बचाएं, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम और नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बारिश के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुना दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से मनीषा ये जाना कि किस तरीके से बारिश के मौसम में हमें हमारे स्वास्थ्य की ध्यान के रखने की जरूरत है, साथ ही हमने ये जाना कि साफ पानी और सुरक्षा का क्या महत्व है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बात करें तो बरसात में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में बासी भोजन, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और कटे हुए फल खाने से बचना चाहिए। घर का ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन सबसे अच्छा होता है। दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही और पर्याप्त मात्रा में पानी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बच्चों को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की बजाय घर के बने पौष्टिक नाश्ता हमें देने की जरूरत है। श्रोता साथियों, बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है साफ सफाई रखना। खाने से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोएं, नाखून काट कर रखें, रोज रोजाना स्नान करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही ठंडा मौसम आने लगता है बहुत से लोग जो है वो नहाते नहीं है। इससे हम देखते हैं कि शरीर में खुजली और संक्रमण बढ़ सकता है। घर और आसपास का जो कूड़ा है उसे जमा न होने दें। शौचालय की नियमित सफाई करें। यदि पूरे गांव में सफाई रहेगी तो बीमारी फैलने की संभावनाएं भी कम रहेगी। बारिश के मौसम में मच्छर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती है श्रोता साथियों, इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। पुराने टायर, टूटे बर्तन, गमले और कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें। रात में मच्छरदानी का उपयोग करें और बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहने।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में भोजन हमेशा ताज़ा और हमें घर का बना हुआ खाना चाहिए। लंबे समय तक रखा भोजन श्रोता साथियों जल्दी खराब हो जाता है। बासी भोजन खाने से श्रोता साथियों हमारे पेट से जुड़ी समस्याएं वो बढ़ने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध, दही, अंकुरित अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी ही वो हमारे शरीर को आवश्यक पोषण देता है। अधिक तला भुना, मसालेदार और खुले में बिकने वाले खाने से श्रोता साथियों हमें बचना है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में पानी के दूषित होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए श्रोता साथियों हमेशा साफ और सुरक्षित पानी हमें पीना है। यदि संभव हो तो पानी को उबाल कर या फिल्टर करके हमें इसका उपयोग करना है। घर के बर्तनों को साफ रखना है और घर के में पानी रहता है उसको ढककर रखना है। अगर श्रोता साथियों आप कहीं बाहर यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको सील पैक वाली बोतल वाला पानी होता है उसका उपयोग करना है। दूषित पानी पीने से बचें श्रोता साथियों। अगर हम दूषित पानी पीते हैं अंजलि जी तो हेजा और टाइफाइड जैसी समस्या है उनका संक्रमण है वो बढ़ने लगता है।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बारिश का मौसम जो होता है उसमें हमें बहुत सारी चटपटी चीजें खाने का भी मन करता है। ऐसे में बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग बाजार की चीजों पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो हमें उस निर्भरता को कम करना है, क्योंकि हमने जैसा कि जाना कि अभी के समय में संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है। मच्छर, मक्खियां, बहुत सारी चीजें पनपती हैं जो हमारे खाने को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हम स्वस्थ भोजन करें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित योग, हल्का व्यायाम और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की को बढ़ावा देने वाली जो चीजें हैं उनका प्रयोग करना है। जैसे कि आंवला, नींबू, अमरूद जैसे विटामिन सी युक्त फल शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, तनाव कम रखते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। श्रोता साथियों, स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि पूरे गांव के लोग मिलकर सफाई रखें, पानी जमा न होने दें, स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पालन करें तो पूरा गांव स्वस्थ रह सकता है। ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जागरूकता फैलाना हम सबका दायित्व है। यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द हो श्रोता साथियों तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह के बिना हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: समय पर इलाज ही हमारे जीवन को बचा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे कि इस मौसम में हाथों की सफाई रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: भोजन करने से पहले, शौचालय जाने के बाद श्रोता साथियों हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बाहर से अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो घर आने पर भी हमें अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना है। यदि श्रोता साथियों बरसात में भीग जाएं तो जल्दी से जल्दी हमें सूखे कपड़े पहनने हैं। गीले कपड़े में लंबे समय तक रहने से श्रोता साथियों सर्दी जुकाम और त्वचा संबंधी समस्या है वो तेजी से बढ़ जाती है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि नाखून हमें छोटे रखने हैं क्योंकि लंबे नाखूनों से अंजलि जी गंदगी और कीटाणु है वो जमा हो सकते हैं। तो श्रोता साथियों स्नान करें और अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखाकर साफ रखें और साफ कपड़े पहने।
0: बिल्कुल मनीषा, बारिश का मौसम खुशियों हरियाली और नई उम्मीद का संदेश लेकर आता है, लेकिन ये तभी सुखद बनता है जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार की देखभाल कर सकता है, खेतों में बेहतर काम कर सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों बरसात के मौसम को केवल आनंद का मौसम न समझें बल्कि इसे सावधानी और जिम्मेदारी का मौसम भी मानें। स्वास्थ्य किसी दवा की दुकान से खरीदा नहीं जा सकता, यह हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतों, संतुलित भोजन, स्वच्छ वातावरण, समय पर की गई सावधानी से बनता है। यदि हम अपने घर, आंगन और पूरे गांव को स्वस्थ रखते हैं, सुरक्षित पानी पीते हैं, मच्छरों से बचाव करते हैं, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान विशेष तौर पर रख पाते हैं, तो हम देखते हैं कि बीमारी के शुरुआती लक्षणों में ही हम उपचार करके गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों स्वच्छता अपनाएंगे, सुरक्षित पानी पिएंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, मच्छरों को पनपने नहीं देंगे और अपने साथ साथ पूरे समुदाय को स्वस्थ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस तरीके से अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और हर मौसम में इसी तरीके से हमें ध्यान देने की जरूरत है कि किस मौसम में हमें कौन सी चीज खानी है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगी कि उन्हें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है। श्रोता साथियों अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को कई संक्रमणों से बचाने में मदद करती है। इसके लिए हमें संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन जीने की आवश्यकता है। विटामिन सी से भरपूर फल श्रोता साथियों जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करने में सहायक होते हैं। मौसम के अनुसार श्रोता साथियों पौष्टिक भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे अंदर कई बीमारियां होती हैं उनका खतरा भी कम हो जाता है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हम कई बीमारियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अपनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है श्रोता साथियों तो छोटी सी बीमारी है वो हमारे अंदर आके बड़ा सा रूप ले सकती है। इसलिए श्रोता साथियों अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं।
0: जी हाँ मनीषा, जब तपती धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि हर मन में नई उम्मीद भी जन्म लेती है। वर्षा ऋतु प्रकृति का अनमोल उपहार है, यह केवल मौसम नहीं श्रोता साथियों बल्कि जीवन का भी आधार है। हमारी खेती, पेयजल, जंगल, नदियाँ, पशुधन और पूरा पर्यावरण जो है वो वर्षा पर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। खेती की सफलता काफी हद तक समय पर होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। यदि समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होती तो खेत लहलहाते नहीं है, अनाज की पैदावार नहीं बढ़ पाती, पशुओं को चारा नहीं मिल पाता, किसानों के चेहरे की जो मुस्कान है वो कहीं चली जाती है। लेकिन यदि वर्षा अधिक होती है तो हम देखते हैं कि खेत लहलहाने लगते हैं, अनाज और पैदावार, पशुधन सभी को बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो पाती है। इसलिए श्रोता साथियों वर्षा केवल पानी नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, जंगलों में नई वनस्पतियां उगती हैं, तालाब और नदियां भर जाती हैं, पक्षियों की चहचहाट और मेंढकों की टरटर प्रकृति की मधुर ध्वनि बन जाती है। गांवों में पहले बच्चे जो है वो बारिश में खेलते हैं, किसान खेतों में बीज बोते हैं, वातावरण में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को आनंद से भर देती है। मानव जीवन का लगभग हर क्षेत्र वर्षा से जुड़ा हुआ है। बारिश से पीने के पानी के स्रोत भरते हैं, बिजली उत्पादन के लिए जलाशयों में पानी आता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, पशुओं को पानी और चारा मिलता है, फल सब्जियां और अनाज की अच्छी पैदावार होती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बरसात के मौसम में हमारे स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखते हैं इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे बरसात के मौसम में हमारे स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल,
0: यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि नियमित व्यायाम और योग का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में अक्सर लोग बाहर टहलने या व्यायाम करने से बचते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी होती है। यदि बाहर जाना संभव न हो श्रोता साथियों, तो घर पर ही योग, प्राणायाम या कोई अन्य व्यायाम आप कर सकते हैं। योग करने से हमारा शरीर है वो लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी मजबूत होती है। प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक हमें व्यायाम जरूर करना है, जिससे हमारा शरीर सक्रिय रहे और ऊर्जावान बना रह सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, गाँव में वर्षा केवल मौसम नहीं बल्कि उत्सव होती है। किसान खेत की तैयारी करते हैं, महिलाएं बीच की तैयारी करती हैं, बच्चे पेड़ लगाते हैं, ग्राम पंचायत जल संरक्षण कार्य में जुटती है। यदि गांव में तालाब, जोहड़ और कुएं सुरक्षित रहें तो वर्षा का पानी पूरे वर्ष काम आता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: मौसम कुछ चुनौतियां लेकर आता है श्रोता साथियों। बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, मच्छर बढ़ते हैं, डेंगू मलेरिया वायरल बुखार फैलते हैं। श्रोता साथियों, दूषित पानी से पेट की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। आज कई क्षेत्रों में बारिश होती है लेकिन उसका पानी बहकर निकल जाता है। यदि हम वर्षा जल संग्रहण करें, तालाबों की सफाई करें, खेतों में मेड़बंदी करें, पेड़ लगाएं, तो पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए मनीषा सबसे बड़ा उपहार है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति को श्रोता साथियों प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है। अच्छी नींद से श्रोता साथियों हमारे शरीर की थकान है वो दूर हो जाती है और रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बनी रहती है। रात में श्रोता साथियों देर तक मोबाइल चलाना, टीवी देखने की आदत है उसे हमें कम करना चाहिए। समय पर सोना और समय पर उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यही अगर अंजलि जी बात करें कि बच्चों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में बच्चे बारिश में खेलना पसंद करते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेलना अच्छी बात है श्रोता साथियों, लेकिन अधिक देर तक भीगना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चों को बारिश में श्रोता साथियों भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े हमें पहनाने चाहिए, उन्हें साफ और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, साथ ही श्रोता साथियों खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थों से उन्हें बचाना है। यदि बच्चे को तेज बुखार, उल्टी या लगातार खांसी हो तो हमें डॉक्टर से सलाह भी लेनी है।
1: जी हाँ मनीषा, पेड़ जितने अधिक होंगे वर्षा का संतुलन उतना ही बेहतर रहेगा।
0: जी हाँ,
1: वनों की कटाई वर्षा चक्र को प्रभावित करती है, इसलिए हर व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: वर्षा ऋतु हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का हर उपहार अनमोल है। पानी की हर कतार जीवन देती है। यदि हम पानी बचाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और स्वच्छता अपनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी हरियाली और खुशहाली का आनंद ले सकेगी।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों आपको यही कहना चाहेंगे कि भारत के अधिकांश किसान आज भी मानसून पर निर्भर है। अच्छी वर्षा का मतलब अच्छी बुवाई, अच्छी पैदावार, बेहतर आमदनी और खुशहाल परिवार, लेकिन अनियमित वर्षा किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आधुनिक खेती, जल संरक्षण और मौसम की जानकारी का उपयोग बहुत आवश्यक है। बारिश केवल खेतों को नहीं पूरे समाज को प्रभावित करती है। विद्यालय में बच्चों का आना जाना प्रभावित होता है, दैनिक मजदूरों का काम रुक जाता है, सड़क टूट सकती है, लेकिन यदि तैयारी पहले से हो तो इन समस्याओं का प्रभाव कम किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: बारिश के मौसम में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ पानी पिए, ताजा भोजन करें, मच्छरों से बचें, घर और अस्पतालों की सफाई रखें, बारिश का जो पानी है उससे भीगने से बचें, तेज बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। श्रोता साथियों, प्रकृति हमें पानी देती है लेकिन इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
0: जी हाँ,
1: वर्षा जल संरक्षण करें, तालाबों और कुओं की साफ सफाई रखें, प्लास्टिक का कचरा नालियों में न फेंके और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल,
1: वर्षा ऋतु हमें केवल पानी नहीं देती बल्कि धैर्य, आशा और संतुलन का संदेश भी देती है मनीषा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि सूखी धरती बारिश की बूंदों से फिर जीवित हो जाती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों के बाद हमारे जीवन में नई शुरुआत संभव होती है। हम सब मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, जल की हर बूंद का महत्व समझें, अपने बच्चों को भी जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संस्कार दें। याद रखिए, जल है तो कल है, वर्षा सुरक्षा है तो जीवन है और प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए उन्हें बरसात के मौसम में श्रोता साथियों विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें ठंडी हवा और गीले वातावरण से हमें बचाना चाहिए। समय पर श्रोता साथियों दवाइयां देनी है, हल्का व्यायाम कराना है, पौष्टिक भोजन उनके लिए उपलब्ध कराना भी हमारे लिए जरूरी है। श्रोता साथियों यदि उन्हें सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो हमें डॉक्टर से सलाह भी लेनी है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी होता है। लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच ही वो शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। बरसात के मौसम में परिवार के साथ समय बिताना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना, प्रार्थना करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। खुश रहने वाला श्रोता साथियों व्यक्ति होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, लेकिन विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना और अंत में बस आपको कार्यक्रम के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, शिक्षा, सफलता और सम्मान तभी सार्थक है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो और मन प्रसन्न रहे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मनीषा, हम अक्सर काम, जिम्मेदारियों और सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपनी सबसे अनमोल संपत्ति अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब हमें एहसास होता है कि दुनिया की कोई भी उपलब्धि अच्छे स्वास्थ्य का स्थान नहीं ले सकती। अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि हमारी सोच, दिनचर्या, खान पान, स्वच्छता, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और संतुलित जीवन पर आधारित होता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनाएं, जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, योग और व्यायाम करना, तनाव को नियंत्रित रखना, नशे से दूर रहना, तो अकेले बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वस्थ रहने का अर्थ केवल बीमारियों से दूर रहना नहीं, बल्कि पूरे उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना भी है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की भी है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षित जीवन शैली के लिए प्रेरित करते हैं, तब पूरा परिवार स्वस्थ बनता है।
1: जी हाँ।
0: इसी प्रकार जब गांव या मोहल्ला मिलकर साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देता है मनीषा, तो समुदाय का स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। एक स्वस्थ समाज ही शिक्षा, रोजगार, कृषि, विकास और सामाजिक प्रगति की सबसे मजबूत नींव बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हमारे घर के सामने पानी जमा है, कचरा फैला हुआ है या गंदगी है, तो श्रोता साथियों, उसका असर है वो हमारे पूरे मोहल्ले पर पड़ता दिखाई देगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए सभी लोग मिलकर अपने गाँव शहर में स्वच्छता रखे, यही श्रोता साथियों जल भराव संबंधित समस्या है उनकी हमें निपटान करनी चाहिए। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है अंजलि जी, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जीवन में कठिनाइयां हैं वो बढ़ जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हर दिन अपने स्वास्थ्य को समय दे श्रोता साथियों, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन की पहचान होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, यह भी समझना आवश्यक है कि मौसम बदलते ही और उसके साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बदल जाती हैं। इसलिए हमें हर मौसम के अनुसार अपनी आदतों में आवश्यक बदलाव लाने की जरूरत है। जागरूकता, समय पर उपचार और सही जानकारी हमें छोटी सी समस्याओं को बड़ी बीमारी बनने से रोकने में मदद करती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कभी कभी पूरे परिवार को कठिनाइयों में डाल सकती है। श्रोता साथियों, जबकि थोड़ी सी सावधानी लंबे समय तक सुख और सुरक्षा दे सकती है।
1: जी हाँ।
0: आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य का सम्मान करेंगे और समाज में स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी फैलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं और स्वस्थ विचार ही एक मजबूत, खुशहाल और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: याद रखिए कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जितना समय हम अपने स्वास्थ्य को देंगे, उतना ही हमारा जीवन ऊर्जावान, सुरक्षित और आनंदमय बनेगा।
1: जी हाँ।
0: आइए स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति स्वास्थ्य को अपना पहला अधिकार और अपनी पहली जिम्मेदारी दोनों समझे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमें मौसम के अनुसार खान पान को भी अपनाना है। वर्षा ऋतु में श्रोता साथियों शरीर की पाचन शक्ति है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए श्रोता साथियों ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच जाए, जैसे कि दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, हरी सब्जियां, मौसमी फल या घर का हल्का भोजन भी आप खा सकते हैं। बहुत अधिक तेल, मसाले और मिठाइयों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। श्रोता साथियों भोजन हमेशा ताजा और गर्म खाएं, बासी भोजन को दोबारा गर्म करके खाने की आदत से बचें, क्योंकि श्रोता साथियों इससे हमारे पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। कहा जाता है श्रोता साथियों कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी होती है। यदि हमारा घर, आंगन और आसपास का वातावरण है वो साफ रहेगा तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। घर के आसपास कचरा इकट्ठा न होने दें, नालियों की नियमित सफाई करवाएं, पानी की टंकियों की सफाई करें और रसोई और शौचालय की भी सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना है।
0: जी हाँ मनीषा, जीवन में हम अनेक सपने देखते हैं, अच्छी शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, खुशहाल परिवार, आर्थिक सुरक्षा, उज्जवल भविष्य, लेकिन इन सभी सपनों को साकार करने की ताकत हमें तभी मिलती है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही वह आधार है जिस पर एक सफल और सार्थक जीवन की इमारत खड़ी होती है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य को केवल बीमारी के समय याद करने की बजाय इसे अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज विज्ञान और चिकित्सा ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी सबसे प्रभावी इलाज वही है जो बीमारी होने से पहले अपनाया जाए। नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम, मानसिक शांति, स्वच्छ वातावरण और सकारात्मक सोच, ये ऐसी आदतें हैं जो किसी भी महंगी दवा से अधिक लाभ दे सकती हैं। शरीर हमें हर दिन संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। यदि हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें तो अनेक गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने घर को स्वस्थ रखते हैं, पानी की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हैं और संक्रामक रोगों से बचाव के नियमों का पालन करते हैं, तब हम केवल स्वयं नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा कर रहे होते हैं। एक जागरूक नागरिक का छोटा सा प्रयास श्रोता साथियों पूरे गांव और समाज के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने मनीषा ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम के लिए राय सुझाव बताना चाहेंगे ताकि उन्हें आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

भाइनो बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करते हो दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा और आपका बहुत अच्छा चलता है, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की ओर बढ़ने की अनुमति चाहूँगी। साथियों, पहली फरमाइश आई है गांधीनगर गुजरात से। फिल्म का नाम है शराबी, गीत के बोल हैं मुझे नौ लखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवाने। फरमाइशकर्ता जुट रहे हैं गांधीनगर गुजरात से, सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। साथियों, पंडरपुर सोलापुर से हैं जाखिल मुलाणी, सुबया सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसीरवी, बानुवी, बादशाह मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार सदस्यगण। पंडरपुर से जुड़ना चाह रहे हैं फुलचिंचोली मुकाम पोस्ट से जाखिल मुलाणी, सुबया सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसीरवी, बानुवी, बादशाह मुलाणी और समस्त मुलाणी परिवार सदस्यगण। शेवगांव से श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली, कोपरगांव से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े जी। पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। रोहिदास चौक से जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर शहर से यशा सिंधे, प्रशांत सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। छत्तीसगढ़ सरगांव से हैं नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता जादव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल जादव, बेबी सिया जादव। जलाना शहर से हैं सोमनाथ, जीता जादव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मुझे नौ लखा मंगवा दे रही ओ सैया दीवाने।

0: आपके बच्चे दाल चावल खा के बड़े हुए होंगे, हमारे तो बताशा और बालूशाही खा के बड़े हुए हैं।
1: आपको कभी कैविटीज की चिंता नहीं होती?
2: नहीं होती। मिठाई के इस व्यापार में पीढ़ी दी पीढ़ी कोलगेट हम करते आ रहे हैं, अब चिंता नहीं होती है, कोलगेट संभाल लेगा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नेहरू चौक पैठन से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं हमको हमी से चुरा लो। इस पहले से गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता है डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबीसिया यादव, जालाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता सुभाष चंदन, ओम यादव, एकनाथ संगीता यादव, झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं अब्बास आलम, अफजद अली, लाडली निशा और सभी घर के सदस्य भी जुड़ रहे हैं। मंगलपुरा बागपत से अब्दुल सतारावासी, अब्दुल खतारावासी जी। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा जी। येतला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष शिवास, विवेक शिवास, बीबी आशीष शिवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमवानस राज। भवानी नगर पैठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन अशोक धोंगड़े जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी अजित कसाना, मायादेवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली से जुड़ रहे हैं ये। इसी बीच हमारे साथी हैं दामणगांव महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, दादा देठे पाटिल, सानिका देठे पाटिल, समर्थ दादा देठे पाटिल, नादुरा से शिवाजी उगले, राहुल उंगले जी। गाजीबाद से शिषपाल अकेला, चेजपाल प्रजापति जी। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सिंह, सुरख हसैन। मगर रोड छत्तीसगढ़ से वनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी करणी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन, सौगा धमतरी से हैं ये। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। मधुबनी बिहार से शबीर परमाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक सचिन शर्मा, रोहित शर्मा, सार्थक शर्मा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। तो गीत के बोल हैं हमको हमी से चुरा लो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हमको हमी से चुरा लो मोहब्बती फिल्म का गीत था श्रोता साथियों, जिसे बहुत ही प्यारे तरीके से आवाज़ दी लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी ने। इससे भी श्रोता साथियों, फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है श्रीरामपुर से जो आया है। फरमाइश करता है अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, गणेश अविका जी। पुणे वाले से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने। इन श्रोताओं की फरमाइश है पत्थर के फूल फिल्म का गीत है, कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है एसपी बाल सुब्रमण्यम सर जी ने और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक जी, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडुराम कुम्हार जी। और भी श्रोता साथी श्रीरामपुर से ही जुड़ना चाह रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहित दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले। पूना वाले पुरे से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, सायसा सोनवाने, विशाखा सोनवाने जी। नादुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत, सागर कटक। नासिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली, भक्ति गवली जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। तो आप बने रहिएगा साथियों आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और मनोरंजन कीजिए ढेर सारी फरमाइश के गीतों के साथ में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत है पोटाकला दुर्गत से आया है। फिल्म का नाम है दोस्तों कभी खुशी कभी गम, गीत के बोल हैं सूरज हुआ मध्यम। इस गीत को आवाज़ सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी ने, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नाशी शेख, नारायण आशीष, साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे सैयद मसूर, नाजमा अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। साथ ही जुड़ रहे हैं और भी, किशोर नगर अमरावती से हीरावन शिंदे, शिलादेव शिंदे, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सप्पिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजर डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। खेलपाचार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोहल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुग्गू सिक्का, भाविका सिक्का। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी बीबी जी और बॉय हिमाक्ष जी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सूरज हुआ मध्यम।
1: वो भी हो गया, अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना फिर।
2: चुप, दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा, कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा, कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, जरूरत नहीं होती। चुप तो नहीं रहा, ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते। और एक बात और बता दूं, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए है, मैं आपको बताना चाहूँगी। श्रोता साथी नेहरू चौक पैठन से जुड़ना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों घायल। गीत के बोल हैं, दिल साथ नहीं जब से ये पागल जवानी है, कोई जाए तो ले आए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे सुरेश यादव, अंत्या जाधव, आरती प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शोर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता जाधव। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बागपत से, आसिफ अली खान, मोमिनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। इसी बीच हमारे श्रोता साथी मस्तानपुरना जंक्शन से हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। श्रोता साथी बागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, मनीष देवी, अर्जुन जी, बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी, भुवनेश्वरी देवी जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुनम देवी जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधुर बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र सानू, नीता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, प्रशिक्षा, प्रतीक्षा और विवेक सांधु जी और मैक्स जी। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मुरर जंगेल, अलिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, ननी जंगेल, सुक्री कला से अमित शकुन, आरुषि ओदिक्या और अंजलि जंगेल। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजनी शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कोई जाए तो ले आए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, ये फरमाइश हमारे बीच आई है कश्मीर से। फिल्म का नाम है प्यार जिंदगी है। गीत के बोल है, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। इस गीत के फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कश्मीर से, फैजरा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन क्वासिरुद्दीन। साथियों, आपको बताना चाहूँगी इस गीत को आवाज़ दी है अभिजीत जी और अलका याग्निक जी ने। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा विना, विपुल अश्विन कांबड़े, विपुल कांबड़े जी। छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे हैं और भी जुड़ रहे हैं। एटा से नसीहबन अब्बासी, निशांत शहनवाज अब्बासी, नवसबत अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनफ यश अब्बासी जी, रसीद वारसी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस तमाड़कर, निर्मल माड़कर, विशाल नवाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सुपान तांडे, आशीष मोहिरकर जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में मनोरंजन करते हैं। गीत के बोल है, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश से नए नए जुड़ रहे हैं तो आप भी अपने फरमाइश के गीतों को हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेषर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगले फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरियाणा से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बिट्टू भाटिया, रिजत भाटिया, रंजित भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराब जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। हनुमानगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर, रानो कृष्णा, श्रीमती सिंधु जी, प्रवीण रंगीला, शीतल और नवीन जी, निशा अनमोल जी और चिंकू मिंकू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

ઓરબી સાથે જોડના ચાહ રહી અમરાવતી સી શ્યામ કીટી વંદના કીટી ભાવિકાજી કીટી इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। भोपाल के राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी और ईशांत चिंपा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे एक प्यार का नगमा है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, गीत के बोल है महबूब मेरे। इस गीत को आवाज दी है मुकेश कुमार जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़नाचार्य गंजरुद्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित जी कांगड़ा। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजादव, प्रशांत राजादव, सचिन वायल, प्रदमेश देशमुख, सरवत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानविजी देशमुख और हर्षिता देशमुख। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। कलानौर से जुड़ना चाह रही नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे महबूब। इस गीत को आवाज दी है मुकेश कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर और मुकेश कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे महबूब मेरे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर सिटी से। फिल्म का नाम है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घुड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, बीबी कुतलेश जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाले गले कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आस्था अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। गंजडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, करीम जी अंसारी। गंजडवारा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों अभी हमने अलका जी और सोनू कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है मेरा साया, गीत के बोल हैं नैनों में बदरा। इस गीत की फरमाइश करता है अरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशी मुणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जय प्रकाश मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र, ज्योति जी मरकाम। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, ईश्वर शर्मा, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं नैनों में बदरा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस जी राज। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। सरथाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भवी जी जैन। धनोरी तेलीवाला से जुड़ रहे हैं निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत की अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभान अब्बासी। अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों, आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है नागिन। गीत के बोल हैं, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना भगत और चेतन जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से सोमदत्त, केरव ज्योति और गुरमंत कौर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे, योगिता जी, प्रणाली जी, पार्थ जी और हांगोणे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। डबकी रोड अकोला से जुड़ रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ना चाह रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुत्रमेश शाहू जी। बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सोनम अलीबा, दानिश जी अंसारी। गोला बाजार बक्सर से जुड़ना चाह रहे श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। सरिंगपुर बक्सर से जुड़ना चाह रहे राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पलारी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल हैं नजर के सामने। इस गीत की फरमाइश करता है नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना गुड़ानी, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन शेंडी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षी रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोइनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। पंजाब से जुड़ना चाह रहे भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशिलाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी जी खेड़ा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जनजीत कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर जी।

एसीबी जूनाचार्य छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। इस गीत के अनुरोध करता है हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युद्धव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला भिंडी, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। इस गीत के अनुरोध करता है आगरा से सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभिरजी चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सूरज चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया, पवन घोड़ी, योगेंद्र नायक और कासगस जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोके जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रिहान खान, बीबी वेदई जोशी, हंसिकाजी जोशी, अंकिता जोशी, पायल जोशी। जगदलपुर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम नायडू जी, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफार डावर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कोपरगांव से पेंटर मतीन मसूदा, दानिश खान जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि माना गुजरा समय वापस कभी नहीं आता, लेकिन संगीत वो जादू है जो कुछ पल के लिए सही मगर खोए हुए पलों को निसंदेह ताज़ा कर देता है। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है जो हमें

श्रोता साधु नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता

जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार

पेशे का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: एवो कहवाय जैवेरे एक बैरू मजबूत बने हैं तैवेरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं,
0: पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपड़े अस्तित्व नी पहचान थकी।
5: जमीन पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है,
0: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपड़ा फैसला खुद लेवानी ताकत।
5: तो आओ बनो आज मलीने आवाज उठावा, एटले हंगरी सूर्य, हंगरी बुने, हंगरी माए आपड़ा हक ने जमीन माते गर्व थकी उभी थई शके।
0: बोनने अधिकार, किम की अधिकारस असली ताकत है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, यदि मन थका हुआ हो तो उपलब्धियां संतोष नहीं देती। जैसा कि कशिश, हम सभी जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं।
0: जी हाँ।
1: कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई परीक्षा में सफलता, कोई व्यवसाय में तरक्की, तो कोई अपने सपनों का घर बनाना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है श्रोता साथियों कि कई बार वर्षों की मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है तब भी मन को वो खुशी क्यों नहीं मिलती जिसकी हमने कल्पना की थी?
0: बिल्कुल।
1: और इसका सबसे बड़ा कारण है मन की थकान।
0: जी
1: तो आज
0: हाँ।
1: के इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर जानेंगे कि अगर मन थका हुआ है तो उपलब्धियां संतोष नहीं देती, इस विषय को लेकर। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि यदि मन थका हुआ हो तो उपलब्धियां संतोष नहीं देती।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले आपको बताया था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी मेहनत कर ली है लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे मन को खुशी नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है साथियों, मन का थक जाना।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जागृति जी, मन की थकान कभी दिखाई नहीं देती लेकिन इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है।
1: जी हाँ
0: साथियों, जब मन थका हुआ होता है तब सबसे बड़ी सफलता भी छोटी लगने लगती है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के भीतर खालीपन महसूस होता है। इसलिए जागृति जी, जीवन में केवल उपलब्धियां ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि शरीर की थकान तो कुछ घंटों के आराम से दूर हो जाती है लेकिन मन की थकान धीरे धीरे बढ़ती है और ये तब पैदा होती है जब हम लगातार तनाव में रहते हैं। हर समय भविष्य की चिंता करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। धीरे धीरे हमारा जो मन है वो बोझिल होने लगता है और जीवन की खुशियाँ फीकी पड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा पहले से कहीं अधिक मेहनत तो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करियर का देख रहे हैं, परिवार और समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं और ये प्रयास अच्छी बात है। लेकिन अगर इस दौर में मन को आराम नहीं मिलेगा तो सफलता भी सच्चा आनंद नहीं दे पाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। साथियों जरा सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी नौकरी हासिल कर ली है लेकिन उसके पास परिवार के साथ बैठने का समय ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्तों से खुलकर बात करने का समय नहीं है और जागृति जी, स्वयं के लिए कुछ पल भी नहीं है तो क्या वास्तव में वह खुश रहेगा? साथियों इसका उत्तर होगा शायद नहीं, क्योंकि खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि मन की शांति से आती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक और बात जो मन को सबसे अधिक थकाती है वह ये है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग जागृति जी दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष नहीं देखते, जिसका परिणाम ये होता है कि अपनी उपलब्धियां भी उन्हें छोटी लगने लगती है।
1: जी हाँ,
0: जबकि सच्चाई तो ये है साथियों कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपने तुलना केवल अपने कल से कीजिए, किसी और से नहीं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन केवल बड़े बड़े लक्ष्यों का नाम नहीं है, छोटी छोटी खुशियाँ भी जीवन को सुंदर बनाती है। सुबह की ताजी हवा, माता पिता के साथ कुछ पल, बच्चों की मुस्कान, मित्रों से बातचीत और प्रकृति के बीच कुछ समय और अपनी पसंद का कोई काम, ये सारी चीजें हमारे मन को नई ऊर्जा देती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति इन छोटी खुशियों को पहचान लेता है वो जीवन में और अधिक संतुष्ट रहता है। हम देखते हैं कशिश की, कई लोग सोचते हैं कि केवल असफलता ही मन को थकाती है लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। श्रोताओं, कई बार लगातार सफल होने का दबाव भी मन को थका देता है। हर बार खुद को साबित करने की चिंता, हर समय सर्वश्रेष्ठ बने रहने की कोशिश करना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देता है। श्रोतो, इसलिए कभी कभी रुकना, आराम करना और स्वयं को समय देना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में श्रोता साथियों, प्रश्न ये है कि मन को स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है?
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले तो आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए क्योंकि अच्छी नींद मन को नई ऊर्जा देती है। नियमित व्यायाम और योग शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि हम देख सकते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या शांत बैठकर आत्मचिंतन अगर हम करते हैं तो इससे भी ढेर सारे लाभ होते हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से आप साझा करें, समय का सही उपयोग करें, प्रबंधन करें ताकि काम और आराम दोनों के लिए जगह बनी रहे।
1: जी हाँ, इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कशिश कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास है उसका सम्मान करना सीखिए श्रोताओं। जब हम अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब मन में संतोष अपने आप बढ़ने लगता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि यदि हमारा मन थका हुआ है तो उपलब्धियां जो होती है वो हमें संतोष नहीं दे सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि यदि मन थका हुआ है तो उपलब्धियां संतोष नहीं देती है। तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि परिवार और समाज की भूमिका हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अगर घर का वातावरण सहयोग और विश्वास से भरा हो, अगर मित्र हमारी बात बिना निर्णय किए सुने, अगर समाज केवल सफलता नहीं बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दे, तो बहुत से लोग मानसिक थकान से बाहर निकल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: युवा साथियों, आपको याद रखना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद नहीं है, अधिक पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वो है जिसमें आपका मन शांत हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपको अपने जीवन से संतोष मिले।
1: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, सफलता और संतोष में भी अंतर होता है। जैसे कि साथियों, सफलता और संतोष दोनों एक जैसे नहीं है। सफलता हमें समाज देता है लेकिन संतोष हमारा मन देता है।
0: बिल्कुल।
1: किसी के पास अच्छा पद हो सकता है, अच्छी आय भी हो सकती है, सम्मान भी हो सकता है, जागृति जी, लेकिन यदि उसके मन में बेचैनी है, तनाव है और खुशियाँ नहीं है तो वो अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए साथियों, केवल सफलता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, सफलता के साथ साथ मन की शांति भी उतनी ही जरूरी होती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे हर हाल में सबसे पहले पूरा करना हो। ये तो एक यात्रा है जिसे मुस्कुराते हुए, संतुलन के साथ और आत्मविश्वास के साथ जीना होगा। अगर मन स्वस्थ रहेगा श्रोतों, तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी खुशी देगी, और अगर मन भी थका हुआ होगा तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: आज के इस कार्यक्रम से हम यही कहना चाह रहे श्रोता साथियों कि अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, मेहनत भी पूरी लगन से कीजिए, लेकिन इस सफर में अपने मन का भी उतना ही ध्यान रखिए, क्योंकि जब मन प्रसन्न, शांत और संतुलित होता है तभी जीवन की हर उपलब्धि सच्चा संतोष देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों का महत्व भी आप समझें, क्योंकि जीवन केवल बड़े सपनों का नाम नहीं है, जीवन छोटी छोटी खुशियों से भी बनता है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, माता पिता से बातें करना, मित्रों के साथ हंसना, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना या अपनी पसंद का कोई शौक पूरा करना, दोस्तों ये सभी बातें मन को एक नई ऊर्जा देती है। और जागृति जी, जब मन प्रसन्न रहता है तब कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगता है।
0: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कशिश कि जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। हम देखते हैं कि कभी जीत मिलती है हमें, कभी हार मिलती है, कभी उम्मीदें पूरी होती है तो कभी इंतजार हमें करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, इन सबके बीच एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर को मुस्कुराते हुए तय करना है। हम अक्सर अपने जीवन की कीमत अपनी उपलब्धियों से तय करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुशी मिलेगी, जब बड़ा घर होगा तब सुकून मिलेगा, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब जीवन सफल होगा। लेकिन श्रोताओं, सच्चाई ये है कि खुशी किसी मंजिल पर हमारा इंतजार नहीं करती है, वो तो कशिश हमारे हर दिन, हमारे हर छोटे छोटे प्रयास और हर अच्छे रिश्ते में छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: उसे महसूस करने के लिए केवल एक शांत और संतुष्ट मन की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कई लोग हर समय खुद को साबित करने में ही लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वे हर बार सबसे आगे नहीं रहेंगे तो लोग उन्हें महत्व देना छोड़ देंगे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि लगातार दबाव में रहने से आपका मन थक जाता है। कभी कभी थोड़ा सा रुकना, अपने बारे में सोचना और खुद को समय देना आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि युवा साथियों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत आप करिए जरूर, लेकिन अपने मन की अनदेखी मत कीजिए। जीवन में सफलता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ संतोष, शांति, अच्छे रिश्ते और स्वस्थ मन भी हो। याद रखिए दोस्तों कि जीवन की सबसे बड़ी जीत केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सफलता को मुस्कुराते हुए जी पाना है।
0: बिल्कुल कशिश, इसीलिए श्रोता साथियों, आप अपने जीवन की दौड़ में इतना मत दौड़िए कि अपने ही मन की आवाज आप सुनना भूल जाए। अपने माता पिता के साथ कुछ पल बैठिए, बच्चों की हंसी को सुनिए, मित्रों से दिल खोल कर बातें कीजिए, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए और सबसे जरूरी स्वयं के साथ भी कुछ पल जरूर बिताए। क्योंकि कशिश, जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा रहता है वही दुनिया से भी सही मायने में जुड़ पाता है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों, थका हुआ मन केवल हमारी खुशियां ही नहीं छीनता, बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्ते, और हमारे सपनों की चमक भी धीरे धीरे वो कम कर देता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अपने मन को समय दीजिए, उसे विश्राम दीजिए, उसे सकारात्मक विचारों से भरिए। हर दिन अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं केवल सफल बनने की कोशिश कर रहा हूँ या सचमुच मैं खुश भी हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, मन को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी दुखी न हो साथियों।
0: बिल्कुल।
1: इसका मतलब तो ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच का साथ न छोड़ें। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे जागृति जी, लेकिन संतुलित मन हमें हर परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ना सिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में दोस्तों आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सफलता का असली मूल्य तब है जब उसके साथ मुस्कान हो, संतोष हो, अपनापन हो और मानसिक शांति भी हो।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन इस यात्रा को अपने मन की देखभाल करना कभी मत भूलिए, क्योंकि स्वस्थ मन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और यही उपलब्धि को सार्थक बनाता है साथियों।
0: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि जब जीवन की अंतिम सांस आएगी तब शायद हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कितने पुरस्कार जीते थे, कितनी बड़ी नौकरी की थी या हमारे बैंक खाते में कितनी बड़ी रकम थी, लेकिन ये जरूर याद आएगा श्रोता साथियों कि हमने अपने जीवन को कितनी शांति, कितने प्रेम और कितने संतोष के साथ जिया था। यही जीवन की सच्ची कमाई है। इसीलिए श्रोता साथियों अपने सपनों को छोड़िए मत, अपनी मेहनत को कम मत कीजिए, अपने लक्ष्य को छोटा मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उन सपनों तक पहुंचने की यात्रा में आपका मन कहीं पीछे न छूट जाए, क्योंकि अगर मन ही थक गया तो मंजिल पर पहुँच कर भी खुशी अधूरी रह जाएगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को कार्यक्रम का एक और गीत यहाँ पर सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मुस्कुराइए, अपने मन का सम्मान कीजिए, अपने अपनों के साथ समय बिताइए और याद रखिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो नहीं जो दुनिया देखे बल्कि वो है जिसे आपका मन पूरे संतोष के साथ स्वीकार करे।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर हो चुकी हूं मैं अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में हाजिर होते हैं तो हम कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं जो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ होता है विषय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मंगलवार शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम सच्चा बचपन में कुछ प्रेरणादायक नाटक आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी जैसा कि श्रोता साथियों कार्यक्रम में मैं हाजिर हो चुकी हूँ तो बातें आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों पहले हम मनोरंजन करें गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी एक नए विषय को लेकर। तो साथियों, आज भी कार्यक्रम में हम जुड़ रहे हैं एक नए विषय के साथ में। आज हम जानेंगे रेडियो नाटक के माध्यम से लालच के जाल के बारे में। दोस्तों, हम देखते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें बिना मेहनत के कुछ पाने का मौका मिलता है। उस समय हमारा मन हमें लालच की ओर खींचता है, लेकिन साथियों वही समय होता है जब इंसान का चरित्र और उसकी सोच की असली परीक्षा होती है। आज का हमारा नाटक इसी बात पर आधारित है। साथियों, ये कहानी है दो सहेलियों की, जो हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
1: नैना, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। हर रोज मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ही मिलता है। कभी मन करता है कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे अचानक सब आसान हो जाए।
2: हाँ आराध्या, यह बात तो सच है कि मेहनत का रास्ता लंबा होता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को मजबूत भी बनाता है। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है और खुशी भी ज्यादा मिलती है।
1: लेकिन नैना, आजकल तो दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है। कई लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं। उन्हें देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वही लोग ज्यादा समझदार हैं।
2: अरे नहीं आराध्या, समझदारी शॉर्टकट नहीं होती। सच्ची समझदारी सही रास्ता चुनने में होती है, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता थोड़े समय की होती है, लेकिन सही रास्ते की सफलता जीवन भर साथ रहती है।
1: नैना, जरा रुको, यहाँ देखो, ये बैग सड़क के किनारे पड़ा है, शायद किसी का गिर गया होगा। चलो इसे उठाकर देखते हैं, शायद इसमें कोई पहचान हो।
2: हाँ आराध्या, देखना चाहिए। अगर किसी का सामान खो गया होगा तो वह बहुत परेशान होगा। चलो देखते हैं, शायद हमें कोई जानकारी मिल जाए।
1: अरे नैना, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में बहुत ज्यादा, मैंने तो कभी एक साथ इतने पैसे देखे ही नहीं।
2: हाँ नैना, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन यह किसी की मेहनत की कमाई है। सोचो, जिसका यह बैग खो गया होगा वह अभी कितनी चिंता में होगा।
1: अरे नैना, एक बात सोचो, अगर ये पैसे हम रख ले तो हमारी बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। कितनी चीजें खरीद सकते हैं हम, कितने काम हमारे पूरे हो सकते हैं।
2: आराध्या, यह सोच तो लालच की शुरुआत होती है। जब इंसान बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, तब वह धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगता है।
1: लेकिन अगर ये पैसे रख भी लें तो किसको पता चलेगा? किसी ने हमें देखा भी नहीं है, फिर इसमें बुरा क्या है?
2: नैना, बुरा इस बात में नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं, बुरा इस बात में है कि हमारा मन क्या कह रहा है, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं अपने मन से हार जाता है।
1: हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद मैं सच में लालच में आ गई थी। कभी कभी पैसा देखकर इंसान अपनी समझ खो देता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है।
2: नैना, यही तो सबसे बड़ी जीत होती है, जब इंसान अपने मन की लालच को पहचान लेता है और उससे दूर रहने का फैसला करता है, क्योंकि चरित्र वही मजबूत होता है जो कठिन समय में भी सही निर्णय लेता है।
1: तुम सही कह रही हो नैना, अगर मैं इस बैग के मालिक की जगह होती तो मैं भी चाहती कि कोई मेरा सामान वापस कर दे। शायद यही इंसानियत की असली पहचान है।
2: बिल्कुल आराध्या, दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। यही सोच समाज को बेहतर बनाती है।
0: तो साथियों, फिर दोनों सहेलियां मिलकर बैग के मालिक को ढूंढती है और उसका सामान उसे वापस कर देती है। उस व्यक्ति की आंखों में जो खुशी और आभार था ना साथियों, उसे देखकर आराध्या का मन गर्व से भर जाता है।
1: नैना, आज मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई है। पैसा इंसान को कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन सही काम करने से जो सुकून मिलता है ना, वाकई वह कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
2: आराध्या, सही कहा तुमने। लालच इंसान को कुछ पल के लिए खुश करता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को जीवन भर सम्मान और आत्मविश्वास देती है।
0: तो प्रिय श्रोता साथियों, ये थी नैना और आराध्या। जैसा कि हमने देखा कि दोनों सहेलियों ने मिलकर उस सामान को उसके मालिक तक पहुंचाया, जिससे आराध्या को ये समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। हमने जैसा कि बीच में सुना था कि आराध्या के मन में लालच तो आया था, क्योंकि इतने सारे पैसे उसने पहली बार देखे थे। तो श्रोता साथियों, आज की कहानियाँ में ये सिखाती है कि लालच इंसान को कमजोर बना देती है, संतोष और ईमानदारी इंसान को मजबूत बनाती है, और सही रास्ता हमेशा हमें सम्मान के रास्ते पर ले जाता है। तो आपसे भी यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, हमेशा याद रखिए कि जो इंसान अपने मन के लालच पर विजय पा लेता है, वही अपने चरित्र की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी रही, और ढेर सारी महत्वपूर्ण बातों को हम जान पाए हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आगे भी मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।

तो श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। जैसा कि हमने गीत से पहले दो सहेलियों की कहानी को सुना था और जाना था श्रोता साथियों कि किस तरीके से लालच करना बुरी बात होती है। साथियों, आपने जो कहानी सुनी वह सिर्फ दो सहेलियों की कहानी नहीं थी, यह हम सबकी जीवन की कहानी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें बिना मेहनत के कुछ पाने का अवसर दिख जाता है और उस समय हमारा मन हमें ये समझाता है कि कोई देख नहीं रहा है, सब लोग ऐसा करते हैं या फिर ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन श्रोता साथियों, सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके फैसलों से होती है। जब हमारे सामने लालच और सच्चाई दोनों खड़े होते हैं, तब जो रास्ता हम चुनते हैं ना साथियों, वही हमारे चरित्र की असली तस्वीर बनता है। तो श्रोता साथियों, अगर जीवन में कभी ऐसा अवसर आए जब लालच आपको आकर्षित करे, तो एक पल रुक कर अपने मन से एक सवाल आप जरूर पूछिएगा, यही कि क्या यह रास्ता सही है, क्या इससे मुझे सच्चा सम्मान मिलेगा। साथियों, अगर मन से आवाज आई नहीं की, तो समझ लीजिएगा कि आपको सही रास्ता चुनना है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनु अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नवा विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आपसे की बातचीत नो विषय है कि बारिश ना मौसम में आपड़े पशुधन नु प्रबंधन हरते करी शका। भाईन बोनू अणा विषय माथे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घणा कानी वाते थाईंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो भाईन बोनू आप हमरते रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન બોનુ ગીત તો અહીં પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે બેન બોનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે બારિશના મોસમ મેં પશુધન પ્રબંધન આપણે હરતે કરી શક. તો બેન બોનુ અણા વિશે માતે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી. તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મને કરા આપણી વાત. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિ જી.
0: સર આપકા બહુત બહુત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુત બહુત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે મોસમ મેં હમ પશુઓ કા પ્રબંધન કૈસે કરે. ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે યે જો મોસમ હૈ વો સંક્રમણ સે ભરા હુઆ હોતા હૈ. મનુષ્ય કે સાથ સાથ પશુ પક્ષી જીવ જંતુ જો હોતે હૈ વો ભી ઇસકી ચપેટ મેં આ જાતે હૈ. તો એસે મેં હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો પશુપાલન કરતે હૈ તો ઉન્હે બારિશ કે મોસમ મેં કિસ તરીકે સે અપને પશુઓ કે પ્રબંધન કી આવશ્યકતા હૈ.
1: જી બિલકુલ. હમ સભી કે લિયે બારિશ કા મોસમ જિતના સુખદાયી ઓર ખુશહાલી ઓર હરિયાલી સે ભરા હુઆ હોતા હૈ યે મોસમ ઉતના હી હમે હર તરફ સે રોગ ભી જો હૈ બઢાતા હૈ. તો જરૂરત હૈ કી इस समय हम अपने पशुधन का भी विशेष प्रबंधन करें, उनकी देखभाल में विशेष सावधानी बरतें. ये करना जरूरी है क्योंकि ये मौसम जैसा कि संक्रमण कीचड़ और परजीवियों की वृद्धि के लिए जो है सबसे अनुकूल माना जाता है. तो सबसे पहले पशुधन के लिए सूखा हवादार और पानी से बचाने वाला जो है पशु घर होना चाहिए या पशु शेड होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसे बारिश के समय बना लेना चाहिए.
0: जी जी बिल्कुल.
1: इससे होगा ये कि इन्हें पानी सर्दी या बीमारियों से आसानी से बचाया जा सकेगा. चारे और पानी की सफाई भी जो है इस समय विशेष ध्यान देने योग्य चीज होती है.
0: जी जी.
1: क्योंकि इस समय फफून कीड़े मकोड़े उसमें लगे होते हैं जिसको खाने से पशुधन जो है संक्रमित हो सकता है.
0: जी हाँ.
1: बारिश में जमीन गीली होती है जिसके कारण खुरपका और मुंहपका ये जो रोग हैं इनकी संभावना भी जो है बहुत बढ़ जाती है.
0: जी बिल्कुल.
1: इसलिए यदि हो सके तो उनके पैरों की जो है नियमित सफाई मतलब उनको धोना या उसमें किसी तरह का जो है कीटाणु रहित करने के लिए कोई घोल यदि मिलाया जा सकता है तो उस पानी में मिला के जो है उनके पैरों की सफाई कर देना चाहिए.
0: जी जी बिल्कुल.
1: अगर ऐसा लगता है कि चरने जाने से या खुले स्थान में रहने से पशुधन ज्यादा गीला हो गया है तो कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से जो है उनको सूखने के लिए साफ कर दिया जाए जिससे होने वाली जो है बीमारियों से उनको बचाया जा सके. इस समय में क्योंकि कीट नियंत्रण भी जरूरी होता है तो पशु शेड जो है उसमें विभिन्न प्रकार से जो है कीट नियंत्रण किया जा सकता है और टीकाकरण के साथ साथ जो है इस मौसम में उनको डीवर्मिंग यानी कि कृमिनाशक देना भी जो है उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है.
0: बिल्कुल सर.
1: तो इस तरह से अगर उनके आहार उनके आवास चारे और पानी का प्रबंधन किया जाए तो ये उनको होने वाली तमाम बीमारियों से बचा सकता है.
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा. जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें पशु प्रबंधन के महत्व पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि आवास का प्रबंधन हम कैसे करें.
1: बिल्कुल. आवास प्रबंधन को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जो है अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: कि पहला है जब हम आवास की बात करते हैं तो छत का विशेष रूप से ध्यान रखें, वो अच्छे से ढकी हो जिससे पानी पशु घर के अंदर न टपके. कोशिश करें कि जहां हमारा पशु घर या पशु शेड हम बना रहे हैं वो जगह थोड़ी सी ऊंचाई पे होना चाहिए ताकि ज्यादा पानी वाली स्थिति में वहां पे पानी जमा ना हो.
0: बिल्कुल.
1: फर्श यदि है तो उस पे सूखी राख या भूसे की थोड़ी सी परत बिछाई जा सकती है जिससे कि उसमें जो नमी है उससे इन्हें चर्म रोग न होने की संभावना रहे.
0: बिल्कुल.
1: पशुधन के लिए हम जो शेड या घर बनाते हैं उसमें रोशनदान होना चाहिए जिससे वहां पे पर्याप्त रोशनी आए और रोशनदान आमने सामने की तरफ हो जिससे हवा का आना और जाना जो है बेहतर तरीके से हो सके और वहां पे ज्यादा नमी ना बने. इसके बाद हम चाहें तो नीम की पत्तियों का पानी फिटकरी या राग जैसे आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से हम हमारे पशु घर को जो है कीटाणु रहित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए क्योंकि इस समय फर्श गीला होता है और आसानी से सूखता नहीं है।
0: जी जी।
1: गोबर और गोमूत्र जो होता है इसको दिन में 2 से 3 बार हो सके तो सफाई कर दिया जाना चाहिए, जिससे भी संक्रमण की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से आवास का यदि प्रबंधन किया जाए तो हम काफी सारी बीमारियों से आवास प्रबंधन से ही हमारे पशुधन को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से ये हम आपके माध्यम से आवास प्रबंधन को लेकर जान पाए। यही स्वास्थ्य प्रबंधन की चीजें इस मौसम में किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आवास प्रबंधन जरूरी है इसी तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी जरूरी है। तो हम यदि बात करें तो पैर गलने की समस्या और त्वचा रोग जो है इस समय ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जिससे बचाव के लिए हम हमारे पशु घर की साफ सफाई नियमित करें और पैर यदि ज्यादा गीले हैं, ज्यादा गंदे लग रहे हैं तो हम उनकी जो है साफ सफाई पे ध्यान दें।
0: जी जी।
1: नीम जो कि हमारे यहाँ बहुत आसानी से हमको उपलब्ध होता है, इसके पत्तों को थोड़ा सा कूट के या पीस के इसके गर्म पानी में जो है इनको उबाल के त्वचा का कहीं संक्रमण लग रहा है या घाव है तो उसकी जो है सफाई इस पानी से की जा सकती है, जो कि काफी उपयोगी होता है। हल्दी और सरसों का तेल, कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे पशुधन को किसी कारण से शरीर के किसी अंग में सूजन है तो वहां पे हल्दी और हल्का सा गुनगुना सरसों का तेल मिला के जो है लगाया जा सकता है। छोटी मोटी चोट पे भी इसको लगाया जा सकता है तो वो घाव कीटाणु रहित रहेगा।
0: जी जी।
1: और उसमें ज्यादा संक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी तरह से यदि आफरा होता है तो हम अजवाइन, मेथी, लहसुन इस तरह का मिश्रण बना के भी जो है उसको पीस के पानी में मिला के हमारे पशुधन को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल भी मिलाया जा सकता है। यदि बड़े पशु को देना है तो 100 ग्राम तक तेल इसमें मिलाया जा सकता है और छोटे पशु को देना है तो 20 से 50 मिलीग्राम तेल मिला के दिया जा सकता है, जिससे आफरा होने पे तुरंत उनको राहत मिलती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हमें लगता है कि पशुधन का शरीर ज्यादा गंदगी से भर गया है तो उसको नहलाने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, जिससे चर्म रोगों से जो है उसको बचाव होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: अगर ज्यादा रोग के संकेत दिखाई दें तो इस स्थिति में हमें जो है किसी अनुभवी पारंपरिक वैद्य से जो है सलाह ली जा सकती है या फिर हम तुरंत जो है डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: मुख्य रूप से होने वाली जो 2 बीमारियां हैं जिसे हम खुरपका मुंहपका यानी कि FMD के नाम से जानते हैं और गलघोटू, ये इस समय पे बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इससे बचाव के लिए यदि समय पे इसके टीके लगवा लिए जाए तो इसकी संभावना खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाने हैं और समस्या के संकेत अगर हमें ज्यादा दिख रहे हैं तो तुरंत हमें पशु चिकित्सक से परामर्श लेनी है। यही सर, हम देखते हैं कि इस मौसम में चारे पानी की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, तो इन बातों का हमारे किसान भाई बहन कैसे ध्यान रखें?
1: जी, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर समय हरा चारा आसानी से उपलब्ध होता है, हर कहीं पानी भी आसानी से उपलब्ध होता है।
0: जी जी।
1: पर इस समय इसका ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे पशुधन को हम हरा चारा देते हैं तो हरे चारे को पहले काट के थोड़ा सा सुखा लें ताकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ना रहे। थोड़ा सुखाने से उसमें होने वाले कीट वगैरह भी जो है उसमें से निकल जाएंगे, जिससे उस चारे को खाने से जो है किसी प्रकार का संक्रमण या बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाएगी।
0: जी हाँ।
1: यदि हमने ज्यादा चारा ला के रखा हुआ है तो उस चारे को सड़ने से बचाएं और अगर ऐसा लगता है तो उसे जो है आप उकेड़े या खाद बनाने के कंपोस्ट के गड्ढे में डाल दें, जिससे उसका उपयोग हो जाएगा। इस समय ये भी जरूरी है कि पूरी तरीके से पशुधन को हरा चारा न खिलाया जाए, कम से कम 30% की मात्रा में उन्हें सूखा चारा भी खिलाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दस्त लगने की संभावना होती है और जो पोषण पशुधन को मिलना चाहिए वो भी जो है बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता।
0: जी बिल्कुल सर।
1: चारे की यदि बात करें तो जो चारा हम काट के ला रहे हैं उस चारे में जब फूल आना शुरू होते हैं तो वो सबसे अच्छी अवस्था होती है उस चारे को काटने की, क्योंकि उस समय वो चारा भरपूर पोषण से भरा हुआ होता है।
0: जी जी।
1: तो कोशिश करें कि जो चारा आप काट के ला रहे हैं वो फूल वाली स्थिति में हो। बारिश के दौरान जब हमारे पशुधन को हम चराई के लिए लेके जाएं तो हम ऐसे स्थानों का चयन करें जहां बहुत ज्यादा कीचड़ या दलदली स्थिति ना हो, क्योंकि इसमें फंसने से पशुधन को जो है चोट भी लग सकती है या किसी तरह की जो है अप्रिय घटना घटने की संभावना भी हो सकती है। तो इसी तरह से पशुधन को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ जो पानी है वो पानी संक्रमित हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब आप पशुधन को छोड़ रहे हैं तो घर से पानी पिला के छोड़ें, या चराई के लिए ले जा रहे हैं तो पानी पिला के ले जाएं जो घर का साफ स्वच्छ पानी हो, और वापिस आने के बाद भी पशुधन को पानी पिला दें, जिससे कि बाहर जाने के बाद वो उस असुरक्षित पानी को नहीं पिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि बारिश के मौसम में हम पशुधन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो अंत में यही आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: दो बातें हैं जिनका इसके अतिरिक्त भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो पहला है कि बिजली गिरने से बचाने के लिए जो है शेड को सुरक्षित बनाएं। इसके लिए एक आसान सा उपाय है, आप एक तड़ित चालक लगा सकते हैं लोहे की राड, और उसमें एक वायर लगा के जो है उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी कोयला या नमक भी उसमें डाल सकते हैं, जिससे अगर बिजली गिरने की स्थिति बनती है तो वो हमारे पशुधन को नुकसान न करे। और एक बात कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चरने के लिए खुले मैदानों में तब तक न भेजें जब तक कि वो शारीरिक रूप से थोड़े बड़े और मजबूत न हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो इन चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं, हम हमारे पशुधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था, आवास और स्वास्थ्य प्रबंधन, इन तीन चीजों का प्रबंधन यदि उचित तरीके से करते हैं तो हमारे पशुधन की उत्पादन क्षमता बरकरार रहेगी और वो किसी तरह की बीमारी या संक्रमण के शिकार नहीं होंगे।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सेम की भाई बोनो अपने अपने व्यास में मनीष जी जुड़े तक कहा था ने एने अपना ने घनी असल तरीका तक ही बताड़ू है कि बारिश ना मौसम में पशु नु आवास, स्वास्थ्य ने चारा ने पानी की व्यवस्था अपने हर ते करवी है ने कई कई बातों अपने ध्यान रखव है। आशा करा हूँ कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा। तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हमरी लय कर गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है गांव की कहानियां स्वराज की सीख को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहा जाता है कि किसी गांव की पहचान केवल उसकी मिट्टी, खेत और घरों से नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन को दिशा देती है। गांव की हर चौपाल, हर कुआं, हर पेड़ और हर बुजुर्ग के अनुभव में ऐसी सीख छिपी होती है जो समाज को जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने और स्वराज की राह दिखाने का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे गांव की उन्हीं कहानियों के माध्यम से कि स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संस्कार है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर बातें हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं गांव की कहानियां स्वराज की सीख को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें रहने वाली है कि गांव की कहानियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। लोक कथाओं में जानेंगे, बुजुर्गों के अनुभवों के बारे में जानेंगे, एकता की कहानियों के बारे में जानेंगे, साथ ही जल जंगल और जमीन की रक्षा हम किस तरह से करें ये भी जानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लोक परंपराएं और त्योहारों के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा और सामूहिक निर्णयों के बारे में, और आज किस चीज की जरूरत है, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है कि किसी भी समाज को समझना हो तो उसकी इमारतों को नहीं बल्कि उसकी कहानियों को सुनिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कहानियां श्रोता साथियों केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे समाज के अनुभव, संघर्ष, संस्कार और मूल्यों का आईना होती है। हमारे गांव में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जागृति जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है।
0: बिल्कुल।
1: इनमें कहीं मेहनत का महत्व है तो कहीं ईमानदारी की मिसाल है, कहीं आपसी सहयोग का संदेश तो कहीं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की सीख है। यही कहानियां श्रोता साथियों हमें स्वराज का वास्तविक अर्थ समझाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, स्वराज का अर्थ केवल शासन चलाना नहीं होता, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बताते हैं। स्वराज का अर्थ है स्वयं प्रशासन करना, अपने कर्तव्य को समझना, समाज के प्रति जिम्मेदार होना और मिलजुल कर विकास की राह बनाना।
1: बिल्कुल।
0: जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्व को भी निभाता है अंजलि, तभी सच्चे स्वराज की नींव मजबूत होती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हमारे गांव में पहले शाम ढलते ही चौपाल सजती थी, बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक साथ बैठ जाते थे, दादा दादी, नाना नानी जीवन के अनुभव से भरी कहानियां हमें सुनाते थे। उन कहानियों में कोई राजा होता था, कोई किसान, कोई चरवाहा, कोई साधु और कोई मेहनतकश महिला। साथियों, इन पात्रों के माध्यम से सत्य, परिश्रम, सहयोग, धैर्य और ईमानदारी की सीख दी जाती थी।
1: जी हाँ।
0: और यही कहानियां बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती थी अंजलि। आज हम देखते हैं कि तकनीक ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन कहानी सुनने और सुनाने की वो परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी ज्ञान तो प्राप्त कर रही है, पर जीवन के कई महत्वपूर्ण संस्कारों से दूर होती जा रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अकेला व्यक्ति सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन श्रोता साथियों जब पूरा गांव मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: पहले हम देखते थे कि गांव में तालाब बनवाने हो, रास्ते सुधारने हो, मंदिर या स्कूल बनाना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करनी हो तो लोग बिना किसी स्वार्थ के श्रमदान करते थे। यह भावना स्वराज की सबसे बड़ी पहचान है। जब समाज स्वयं अपने विकास की जिम्मेदारी उठाता है तब बाहरी सहायता केवल सहयोग बनती है, आधार नहीं। श्रोता साथियों, एक प्रेरक कहानी अक्सर सुनने को मिलती है कि एक गांव में वर्षों से पानी की समस्या थी।
0: बिल्कुल।
1: हर गर्मी में जागृति जी लोग दूर दूर से पानी लाते थे, कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ। तब गांव के लोगों ने तय किया कि वे स्वयं श्रमदान करेंगे। सभी ने मिलकर पुराने तालाब की सफाई की, वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाई और कुछ ही वर्षों में गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।
0: बिल्कुल।
1: यह कहानी हमें बताती है श्रोता साथियों कि स्वराज केवल मांगने से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से आता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे गाँव की कहानियाँ प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाती है। पुराने समय में पेड़ों को परिवार का सदस्य माना जाता था, तालाबों की पूजा की जाती थी, जल स्रोतों को साफ भी रखा जाता था और जंगलों की रक्षा पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इन परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं थी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का गहरा संदेश भी था। आज जब जल संकट और पर्यावरण प्रदूषण ये सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, तब इन कहानियों की सीख पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे हैं अंजलि कि गांव की कहानियां स्वराज की सीख किस तरह से है, तो बातें इसी तरह बनी रहेंगी हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही हैं गांव की कहानियां और स्वराज की सीख को लेकर, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना। हमने गीत से पहले जाना कि हमारे गांव की कहानियां प्रकृति से प्रेम करना हमें कैसे सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है जागृति जी कि गांव की महिलाओं की कहानियां भी प्रेरणा का स्रोत है। हम देखते हैं कि उन्होंने सीमित संसाधनों में परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, खेतीबाड़ी में सहयोग किया और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी।
1: बिल्कुल,
0: आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे बचत कर रही हैं, छोटे उद्योग चला रही हैं और अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह भी स्वराज का ही एक रूप है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज को आगे बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि युवा किसी भी गांव की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें तो गांव की तस्वीर बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कई गांवों में युवाओं ने पुस्तकालय शुरू किए, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, नशा मुक्ति अभियान चलाए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्वच्छता अभियान में नेतृत्व किया। जागृति जी, इन छोटे छोटे प्रयासों ने पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया। यह हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े पद या बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि अच्छे विचार और दृढ़ संकल्प से होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्राम सभा भी स्वराज की एक महत्वपूर्ण पहचान है। गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं और उनकी जिम्मेदारियां साझा करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत भी होता है। श्रोताओं, अगर ग्राम सभा केवल औपचारिकता बनकर रह जाए तो स्वराज अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि हर नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेगा, अंजलि, सुझाव देगा और निर्णयों को क्रियान्वयन में सहयोग करे तो गांव तेजी से आगे बढ़ सकता है। गांव की कहानियां हमें ये भी बताती है कि समाज का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने घर के सामने सफाई रखे, पानी की बचत करे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे, बुजुर्गों का सम्मान करे और जरूरतमंद की मदद करे तो पूरा गांव अपने आप बदलने लगता है। और यही सच्चा स्वराज है जहां परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आज हमें कई कहानियों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्कूलों में, परिवारों में, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से और सामाजिक कार्यक्रमों में गांव की प्रेरक कहानियों को स्थान मिलना चाहिए। जब बच्चे अपने गांव के नायकों, किसानों, महिलाओं और शिक्षकों और समाज सेवकों की कहानियां सुनेंगे तो उन्हें भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी।
1: बिल्कुल,
0: सामुदायिक रेडियो इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेडियो गांव की उन आवाजों को सामने लाता है श्रोता साथियों, जो अक्सर बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाती। जब किसी किसान की सफलता की कहानी, किसी महिला समूह की उपलब्धि या किसी युवा के नवाचार की चर्चा रेडियो पर होती है तो वह केवल एक कहानी नहीं रहती बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार रेडियो कहानियों को स्वराज की सीख में बदलने का माध्यम बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि हम अपने गांव की अच्छी कहानियों को खोजें, उन्हें सुने, दूसरों तक पहुंचाएं और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि जब कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है तभी उसका वास्तविक अर्थ सामने आता है।
0: जी हाँ,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव की मिट्टी में केवल फसलें नहीं उगती बल्कि विश्वास होता है, सहयोग, संस्कार और स्वराज के बीज भी अंकुरित होते हैं। हर गांव की कहानी हमें सिखाती है कि विकास बाहर से थोपा नहीं जाता बल्कि भीतर से जन्म लेता है। और जब अंजलि लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर समाज बनाने का संकल्प लेते हैं तभी सच्चे स्वराज का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोताओं, आप भी अपने गांव की हर प्रेरक कहानी को अपनी ताकत बनाएं और ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति ये कह सके कि गांव हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और इसका भविष्य भी हम सब मिलकर संवारेंगे। यही है गांव की कहानियों से मिलने वाली सबसे बड़ी स्वराज की सीख।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव की कहानी केवल बीते समय की यादें नहीं होती हैं, बल्कि वे समाज के अनुभव, संघर्ष, सहयोग और आत्मनिर्भरता की जीवंत धरोहर है। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है जो हमें ये बताती है श्रोता साथियों कि सीमित संसाधनों के बावजूद लोग आपसी विश्वास, श्रम और एकजुटता से बड़े संकट का समाधान निकाल सकते हैं। यही कहानियां आने वाली पीढ़ियों को यह भी समझाती है जागृति जी कि विकास केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बल्कि जागरूक नागरिक की भागीदारी, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों से संभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज का अर्थ, जैसा कि कार्यक्रम में हमने पहले भी बताया, कि केवल शासन चलाना नहीं बल्कि अपने गांव, अपने संसाधनों और अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं उठाना है। जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण, महिलाओं के सम्मान, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाता है, तब सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी सकारात्मक पहल समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो बस हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब हम अपने गांव की कहानियों को केवल किस्से नहीं बल्कि जीवन की सीख मानकर अपनाते हैं तभी स्वराज हमारे व्यवहार में दिखता है।
0: जी जी,
1: गांव की हर प्रेरक कहानी हमें ये संदेश देती है कि बदलाव किसी बड़े शहर से नहीं होता बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है।
0: जी हाँ,
1: अपनी लोक परंपराओं, अपने बुजुर्गों के अनुभव और अपने गांव की प्रेरणादायक कहानियों को संजोए क्योंकि इन्हीं में छिपी है सच्चे स्वराज की सबसे बड़ी सीख।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें जानी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। अब समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है पाचन तंत्र मजबूत करने और पाचन क्रिया सुधारने के उपाय को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम जो भी भोजन करते हैं उससे मिलने वाली शक्ति और पोषण इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा पाचन तंत्र कितना स्वस्थ है। यदि मनीषा पाचन सही हो तो शरीर को ऊर्जा मिलती है।
0: जी हाँ,
1: मन प्रसन्न रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन यदि पाचन कमजोर हो जाए तो गैस, अपच, पेट फूलना, जलन, भूख न लगना, थकान और कई सारी अन्य समस्याएं हमारे सामने आने लगती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों, पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के स्वास्थ्य की आधारशिला है। आज हम जानेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है, किन कारणों से यह कमजोर पड़ता है और कौन कौन से सरल घरेलू उपाय और जीवन शैली संबंधित उपाय अपनाकर हम अपनी पाचन क्रिया को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र मजबूत करने व पाचन सुधारने के उपायों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, अनियमित खान पान, जंक फूड का बढ़ता सेवन, तनाव, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पाचन संबंधी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए श्रोता साथियों, केवल बीमारी होने पर उपचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों को भी अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल कर शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है।
0: जी हाँ,
1: इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मुख, अन्नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पिताशय, ये सभी सारी चीजें शामिल होती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भोजन का सही ढंग से पाचन और पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषित होना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज ज्यादातर लोग हैं वो गलत जीवन शैली के कारण भी पाचन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं श्रोता साथियों, जैसे कि समय पर भोजन न करना, अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन करना, फास्ट फूड या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, कम पानी पीना, भोजन अच्छी तरह चबाकर नहीं खाना, अधिक तनाव होना, साथ ही देर रात तक जागना, शारीरिक श्रम और व्यायाम की कमी, धूम्रपान एवं शराब का सेवन। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के हम दवाइयों का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण भी हमारी पाचन से जुड़ी जो समस्या है वो बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, बहुत सी बार जल्दी जल्दी खाना खाना भी इसकी एक समस्या का कारण हो सकता है। श्रोता साथियों, इन कारणों से पेट की प्राकृतिक कार्य प्रणाली प्रभावित होती है और पाचन संबंधित परेशानी बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ,
1: यहीं अब बात आती है कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो श्रोता साथियों, भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाएं। अक्सर मनीषा आपने भी सुना होगा कि अपने घर परिवार में बहुत सी बार जब कोई बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाता है तो घर के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसे कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाओ, उसका पूरा रस बनाकर हमें खाने की जरूरत है। श्रोता साथियों, पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम भोजन को तोड़ने लगते हैं। जल्दी जल्दी खाने से पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसलिए प्रत्येक निवाले को आराम से चबा कर खाना चाहिए। कहना चाहेंगे कि शरीर एक निश्चित दिनचर्या को पसंद करता है, जैसे कि रोज लगभग एक ही समय पर नाश्ता करना, दोपहर का भोजन और रात का भोजन करने से पाचन बेहतर रहता है। लंबे समय तक भूखे रहना श्रोता साथियों, फिर एक साथ बहुत ज्यादा खा लेना अपच का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से पाचन तंत्र मजबूत करने व पाचन क्रियाओं को सुधारने के उपाय क्या हैं उनको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों, के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से, वहीं हम गीत से पहले जान पा रहे थे कि पाचन तंत्र मजबूत करने के क्या प्रमुख उपाय हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि हमने जाना कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना है, नियमित समय पर भोजन करना है, इसी के साथ संतुलित और स्थानीय भोजन अपनाएं। यानी कि मनीषा, हमारे गांव कस्बों में मिलने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ पाचन के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे कि मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये सभी दालें और अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दही, छाछ और मट्ठा। श्रोता साथियों, इनमें रेशा यानी कि फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। इसी के साथ पर्याप्त पानी पिए, यानी कि कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि पानी पाचन का सबसे सरल और प्रभावी साथी है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भोजन नरम रहता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना कई लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव का सीधा प्रभाव है वो हमारे पेट और आंतों पर पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं। श्रोता साथियों, ध्यान, योग, संगीत और सकारात्मक सोच से हमारा तनाव है उसको कम करने में मदद मिलती है। साथ ही हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि उन्हें पर्याप्त नींद लेनी है। रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और पाचन को संतुलित रखने के लिए आवश्यक होती है।
0: जी जी,
1: देर रात तक जागने से श्रोता साथियों हमारी पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि छाछ में लाभकारी जीवाणु होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। भोजन के बाद हल्की सी छाछ और थोड़ा सा भुना जीरा और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर लेना पाचन के लिए उपयोगी होता है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ रेशेदार भोजन बनाएं, यानी कि फाइबर आंतों की गति को बेहतर बनाता है। इसके अच्छे स्रोत जैसे कि सलाद, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित दालें, चना, मूंग, मटर, ये सारी चीजें कब्ज से बचाने में हमें मदद कर सकती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, हल्का व्यायाम, योग करना पाचन क्रिया को सक्रिय रखता है। श्रोता साथियों, भोजन के तुरंत बाद लेटने के बजाय कुछ देर धीमी चाल से टहलना लाभकारी होता है। योग और प्राणायाम को हमें हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है और इसी के साथ कई ऐसे पारंपरिक उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे कि अजवाइन और काला नमक की बात करें तो श्रोता साथियों, भोजन के बाद थोड़ी सी मात्रा में इसे लेने से गैस और भारीपन से राहत मिलती है।
1: जी हाँ।
0: सौंफ भोजन के बाद चबाने से पाचन में सहायता मिलती है और मुंह की ताजगी बनी रहती है। जीरा की बात करें तो भुना जीरा जो होता है वो छाछ या सलाद में हम उपयोग में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अदरक थोड़ी सी मात्रा में लेने से हमारा जो पाचन है वो सही रहता है। कुछ लोग जो है कब्ज में त्रिफला का उपयोग करते हैं, लेकिन नियमित सेवन से पहले हमें विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रखें श्रोता साथियों कि घरेलू उपाय जो है वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के लिए इलाज नहीं होते, इसके लिए हमें डॉक्टर से ही संपर्क करने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि हमारा पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो तो हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, साथ ही त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है, पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिलता है, कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है और साथ ही हम देखते हैं कि इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को बार बार तला भुना खाने से बचना है, अधिक मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है और भोजन के तुरंत बाद भारी व्यायाम भी नहीं करना है। श्रोता साथियों, कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे पाचन को सही रख सकते हैं। और बहुत सी बार सवाल ये आता है कि हमें डॉक्टर से संपर्क कब करने की जरूरत है, तो श्रोता साथियों, अगर हमारे पेट में लगातार दर्द रहता है, बार बार उल्टी और दस्त आती है, मल में खून आता है, अचानक वजन जो है वो कम हो जाता है, लगातार कब्ज और गंभीर गैस, भोजन निगलने में कठिनाई और लगातार जलन या अपच रहती है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर डॉक्टर के बताए अनुसार चीजों का प्रयोग करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ और ग्रामीण क्षेत्रों की कई पारंपरिक आदतें पाचन के लिए बहुत लाभकारी हैं, जैसे कि मौसमी भोजन, मोटे अनाज, खेत खलियान का श्रम, जल्दी उठना, समय पर भोजन और परिवार के साथ बैठकर खाना। आधुनिक जीवन की अच्छी सुविधाओं के साथ यदि हम इन परंपराओं को अपनाकर रखेंगे मनीषा, तो पाचन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रह सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे और अंत में कहना चाहेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसी महंगे उपाय की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। नियमित समय पर भोजन करना, अच्छी तरह चबाकर खाना, पर्याप्त नींद, रेशेदार आहार, छाछ दही, रोजाना चलना फिरना, योग, तनाव से दूरी, पूरी नींद लेना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। स्वस्थ पाचन केवल पेट की समस्या से बचाने का उपाय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और खुशहाल जीवन की नींव है। इसलिए हम सभी को अपने घर परिवार में सही भोजन, सही समय और सही जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है ताकि हमारा पाचन मजबूत रहे और हमारा समाज स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न बना रहे।
1: इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ श्रोता साथियों, हम आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।